दोस्तों FM 102.8 पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र और आप सभी श्रोताओं का हम अपनी प्रातःकालीन सभा में करते हैं हार्दिक स्वागत। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर

0: तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय यह सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगर पालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। समय बदलने का इंतजार मत कीजिए, अपने प्रयासों से समय बदलने की कोशिश कीजिए। एक छोटा कदम भी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ कदम होता है। ये था आज का चिंतन। और अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

निजी श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस का प्रसारण किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भाग 318। छह 6:45 पर संगीत सरिता का प्रसारण किया जाएगा। श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं आप सुन रहे हैं आजकल, और इसका भाग 6 आज प्रसारित किया जाएगा। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की, और इस कार्यक्रम को आप पुनः शाम को 6:45 पर सुन सकते हैं।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिस्तरे गीत और 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के। पर त्रिवेणी का प्रसारण किया जाएगा। आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, और इसे आप पुनः सुन पाएंगे दोपहर 2 बजे। 8:30 पर नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक।

और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री करीना कपूर पर। आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और इस कार्यक्रम को आप पुनः सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा उजाले उनकी यादों के। संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक आज प्रसारित होगा। संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11:00 कार्यक्रम रंग तरंग, 12:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1:00 सुनिएगा कार्यक्रम सुरीला सफर, 2:15 पर दोपहर समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 3:00, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक है। शाम 4:00 सुनिएगा पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा, डॉक्टर अजीत मिश्र से जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। ममता सिंह की बातचीत आप सुनेंगे, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबेर खान की। शाम 5:00 सुनिएगा छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7:00, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म यादों की बारात के गाने। रात्रि 8:00 हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका प्रेम दीवाना, लेखन ब्रजभूषण, निर्देशन पुरुषोत्तम धारवेकर। कार्यक्रम चित्रलोक 8:15 पर सुनेंगे आप और 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9:00 कार्यक्रम आपके लिए और 10:00 छाया गीत, आलेख एवं स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात्रि 11:00 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये था आज का झरोखा। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, इसमें आज आप सुनेंगे भाग 318 लंका कांड।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। एक ओर श्री राम तो दूसरी ओर रावण के जयघोष के साथ दोनों ओर के वीर सेनानी एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं। वानर और भालू भीमकाय शिलाखंड किले पर फेंकते हैं। राक्षसों के पैर पकड़ उन्हें धरती पर पटक देते हैं। श्री राम के प्रताप से वानर सेना राक्षसों के झुंड के झुंडों को मसल कुचल डालती है और चारों ओर राम का जय घोष गूंज उठता है। राक्षसों के समूह युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। नगर में स्त्रियों बच्चों और विकलांगों का क्रंदन सुनाई देने लगा। नगर निवासी इस विपत्ति के लिए रावण को कोस रहे हैं। रावण ने जब अपनी सेना के पस्त होकर युद्धभूमि से भागने का समाचार सुना तो भागते सैनिकों को रोक चेतावनी दी, जो भी युद्ध में अपनी पीठ दिखाकर

उस समय पश्चिमी द्वार पर मेघनाथ से उनका युद्ध हो रहा था। द्वार तोड़ना कठिन लग रहा था। हनुमान को अतिशय क्रोध हो आया। काल की भांति गर्जन करते हुए एक भीमकाय शिलाखंड लेकर वे लंका के किले पर जा चढ़े। फिर मेघनाथ के रथ को सारथी समेत छिन्न भिन्न कर दिया और लात से मेघनाथ की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि वो धराशायी हो गया।

0: संगीत सरिता में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज आप सुनेंगे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला का छठा भाग।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। दो शिष्य अपने गुरुजी से बार बार पूछा करते थे कि हम कैसा गाते हैं। गुरुजी चुप्पी साध जाते थे। जब बार बार पूछने पर एक दिन उन्होंने कहा कि गाना सुनाओ। गाना सुनाने के बाद फिर वही सवाल पूछा कि गुरुजी हम कैसा गाते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा, अभी तो हमने तुमसे रियाज सुना है, तुमने सिर्फ रियाज गाया है, गाना तो बहुत दूर है। तो खास बात यह है कि गायन में स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। जितना गायन सहज होगा उतना आत्मचेतना लाएगा। मैं सोचता हूँ कि अच्छे गायन के लिए हर जोड़ बेजोड़ होना चाहिए। उसमें बढ़त, बहलावे, डांट, कंपित, आंदोल, लहक, लाग, डगर, जरब, ध्रुव, स्मृत, मुरन, सूत, मींड, बल, पेंच, डांट, धुरन, मूर्छित,

नमक सपाट छूट गमक की ताने बोल ताने फिरत जरब से गमक कूट तान कड़क मंद्र मध्य प्रधान होते हुए भी तीनों सप्तक में सधी हुई ताने आदि आदि होना बहुत आवश्यक है। स्वर के उपासक माया के बंधनों को तान तलवार से काट कर राग रंग से भवसागर को तर जाते हैं। तो आइए मेरी स्वरचित बंदिश सुनिए राग मारवा में।

गायक में यह विशेषता होनी चाहिए कि वो बंदिश को अपने गले के धर्म के अनुरूप स्वरूप में ढाल दे। आमिर खान साहब ने राग बिलासखानी में तानसेन के ध्रुपद को कितना खूबसूरत ढाला है, तो वह बंदिश मैं आपको गाकर सुनाऊं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। इस श्रृंखला का छठा भाग अभी आपने संगीत सरिता में सुना। इसे प्रस्तुत किया था प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरू करते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत इस गीत के साथ।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म सुरंग से मन्ना डी की आवाज में। शिवन रिजवी का लिखा गीत था, संगीत था शिवराम कृष्ण का।

0: मोहम्मद रफ़ी और लक्ष्मी शंकर की युगल आवाज़ों में अभी आपने गीत सुना फिल्म मस्ताना से। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे मदन मोहन का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियाँ देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र FM 102.8 पर। कार्यक्रम चल रहा था भूले बिस्तरे गीत, जो कि लेकर हाजिर होंगे 7:20 पर। स्टूडियो की घड़ी में अभी 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जो कि हमारे पुणे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर
2: मार उड़ाई
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। बूट पॉलिश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले मन्ना डे और साथियों के स्वरों में। शैलेंद्र का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: बूट पॉलिश फिल्म का गीत आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों के स्वरों में आपने अभी सुना। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा। मैं हूं पूजा नारानिया, नमस्कार।
1: देखो टर्मरिक

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हम है राही प्यार के, ये थोड़ी ही देर में लेकर हम आ रहे हैं।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम हम है राही प्यार के लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तपस्या से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में। एम जी हशमत का लिखा गीत, धुन बनाई है रविंद्र जैन।

0: जंबो जेट जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तकदीर से। उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उषा तिमोथी की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के कार्यक्रम पिया का घर। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम हम है राही प्यार के। गीत गाता चल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक।
2: ओ, ओ।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चिचोर का गीत येशुदास और हिमलता की आवाजों में, संगीतकार और गीतकार रविंद्र जैन हैं।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दुल्हन वही जो पिया मन भाई, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। यशुदास, हेमलता और बंसरी सेनगुप्ता की आवाजों में गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन थे। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा, पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का

0: उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
8: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना हो।
7: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
9: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
7: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अपने शहर की सड़क के किनारे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और बस वाहन चलाने वालों पर एक नजर डालिए। आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने दोपहिया या चौपहिया वाहन चला रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक है? मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने का मतलब है खुद को और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को खतरे में डालना। ये बातें मीडिया के जरिए बार बार समझाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग उम्र के लोग गाड़ियां चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। गाड़ी रोककर दो मिनट बात करके फिर आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो गाड़ी चलाते हुए ही की जा सकती है और खुद को और दूसरों को खतरे में डालना जरूरी है?
1: ए भाई।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: दरअसल वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने शहरों की सड़कों को सुरक्षित बनाएं। हम सब यातायात के नियमों का पालन करें। हम सब दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करें, चाहे वो हमारे फैशन, हमारी स्टाइल के अनुरूप क्यों ना बैठता हो। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अपने बाल खराब हो जाने के डर से या अपना चश्मे की स्टाइल नजर ना आने के डर से हेलमेट लगाना पसंद ना हो, लेकिन हेलमेट आपकी जान की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हेलमेट के बिना बिल्कुल सफर पर निकलना ही नहीं चाहिए।
1: अरे

तमाम शहरों में ट्रैफिक सिग्नल इसलिए लगाए गए हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से चले, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की लाइट हरी होने से पहले ही वो अपने वाहन दौड़ा देते हैं। जरा सोचिए कि दूसरी तरफ से तेजी से आ रहा वाहन अगर आपके वाहन से टकरा जाएगा तो आपकी ये जल्दीबाजी आपको कहां पहुंचा देगी, ये सोचना कितना खौफनाक लगता है ना। जो सड़क सुहानी होती है वही सड़क आपके लिए जानलेवा भी बन सकती है। आइए हम अपनी और तमाम लोगों की हिफाजत करते हुए एक साथ अपनी सड़कों पर चलते रहें, किसी के लिए शामत या मुसीबत न बने।

0: पति पत्नी और वो दो, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना नीलकमल सिंह, शिवा चौधरी और टोनी कक्कर की आवाजों में। आशुतोष तिवारी और टोनी कक्कर का लिखा गीत था। इस गीत को संगीतबद्ध किया नीलकमल सिंह ने, साथ ही टोनी कक्कर ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

और फिर बनी म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस, और फिर संगीतकार

0: कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर
2: मार उड़ानी, मार उड़ानी।
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना रोमी और तनिष्क बागची की आवाज़ों में। नीरज राजावत का लिखा गीत था, धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। और अब अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये लाइन सुनते ही जिसका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है वो है बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान। अभिनय में अपनी अलग पहचान और खूबसूरत अंदाज, साथ ही बेबाक व्यक्तित्व से करीना ने हिंदी सिनेमा में एक खास मुकाम बनाया। करीना की खासियत सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास और हर किरदार को अपने अंदाज में जीने का हुनर भी है। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर ढेरों प्यार और शुभकामनाओं के साथ कहेंगे हैप्पी बर्थडे करीना। यूं ही अपनी शर्तों पर जीती रहिए, मुस्कुराती रहिए और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतती रहिए। और अब करीना कपूर की पसंदीदा फिल्मों में से एक खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: जब वी मैट फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज में इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत था।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं एजेंट विनोद फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम का संगीत।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अब कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज 21 सितंबर और आज है विश्व अल्जाइमर दिवस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर के किसी बुजुर्ग को किसी का नाम याद ना आए, एक ही बात बार बार पूछे, या रोजमर्रा की जानी पहचानी चीजों को पहचानने में परेशानी होने लगे? कभी कभी हम इसे उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा समझकर टाल देते हैं, लेकिन हर भूल सिर्फ उम्र का असर नहीं होती। इन्हीं बातों के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता को धीरे धीरे प्रभावित कर सकती है। इसका असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। इस दिन का सबसे बड़ा उद्देश्य है जानकारी बढ़ाना, शुरुआती संकेतों को पहचानना और सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेने के लिए लोगों को जागरूक करना। और शायद सबसे जरूरी बात, अल्जाइमर से जूझ रहे व्यक्ति को हमारी झुंझलाहट नहीं, हमारी समझ और साथ ही तो चाहिए। तो आज विश्व अल्जाइमर दिवस पर एक छोटी सी बात याद रखिए, याददाश्त कमजोर हो सकती है लेकिन इंसान की गरिमा और उसके प्रति हमारा अपनापन कभी कम नहीं होना चाहिए।

0: पा फिल्म का गीत ये आप सुन रहे थे। इस गीत के गायक कलाकार थे बावथारिणी और श्रवण, साथ ही साथियों ने साथ दिया स्वानंद किरकिरे की रचना और इलैया राजा का संगीत।
1: नसीला नसीला तेरा नैना चुराइले हमरा चैना अब हमरे दिल में रहना।

0: स्टेशन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, सुनिधि चौहान और पीयूष मिश्रा की आवाजें। लिखा है इस गीत को पीयूष मिश्रा ने और धुन बनाई है विशाल शेखर ने। आज करीना कपूर का जन्मदिन है, इसीलिए हमने ये गीत भी उनकी फिल्म से चुना। और साथ ही आपको बता दें श्रोताओं कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा अभिनेत्री करीना कपूर पर। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। और अब आपको सुनवा रहे हैं कुछ संदेश।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओ

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सन ऑफ सरदार 2 फिल्म से। रोमी ने और लीजो जॉर्ज ने इस गीत को गाया है, कुमार ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है लीजो जॉर्ज ने।

0: जंबो जेट जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और अब आपको सुनवा रहे हैं कॉकटेल 2 फिल्म से प्रीतम और अरिजीत सिंह का गाया ये गीत। गीतकार और संगीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने भी इस गीत को गाया है और लिखा भी है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतकार हैं प्रीतम।

जब तक है जान, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाजों में, गुलजार का लिखा गीत, ए आर रहमान का संगीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति। मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म से शान ने इस गीत को गाया है। देव कोहली का लिखा गीत है और अनु मलिक का संगीत।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होने जा रहा है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित रहेगा अभिनेत्री करीना कपूर पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी अभिनेत्री जो टिपिकल बॉलीवुड के रोल भी उतनी ही कुशलता से करती हैं जितनी कुशलता से वो गंभीर भूमिकाएं निभाती हैं।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें करीना कपूर की। करीना कपूर जाने माने अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता की बेटी हैं। उनके दादा राज कपूर शोमैन के नाम से विख्यात थे, यानी कपूर खानदान का रोशन चिराग हैं करीना। उनकी बहन करिश्मा कपूर पहले ही फिल्मों में आ चुकी थीं और करीना कपूर का फिल्मों में आगमन अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ सन 2000 में हुआ, जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी के जरिए।

जैसा कि मैंने आपसे कहा, करीना कपूर ने एक तरफ टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन वाली भूमिकाएं बहुत खूबी से निभाई हैं, दूसरी तरफ उनकी कुछ गंभीर फिल्में भी आई हैं, जैसे सुधीर मिश्रा की फिल्म चमेली, जिसके जरिए पहली बार वो एक गंभीर अभिनेत्री के तौर पर जानी गईं।

विशाल भारद्वाज की फिल्म ओंकारा में उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार बड़ी खूबी से निभाया था। साल 2007 में आई वो फिल्म कैसे भूल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। इस फिल्म के निर्देशक थे इम्तियाज अली। इस फिल्म में करीना कपूर के साथ नायक थे शाहिद कपूर और ये फिल्म थी जब वी मेट।

रिफ्यूजी के बाद करीना कपूर की फिल्म आई मुझे कुछ कहना है। इसके अलावा उनकी कुछ और महत्वपूर्ण फिल्में हैं अजनबी, यादें और कभी खुशी कभी

करीना कपूर ने अपने अभिनय के जरिए अपना लोहा मनवाया है और आज वो मुंबई फिल्म जगत की एक प्रतिभाशाली चोटी की अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।

करीना कपूर अपनी भूमिकाओं का चुनाव बहुत सोच समझकर करती हैं। जाहिर है कि ऐसे में उनकी गिनी चुनी फिल्में आ रही हैं, लेकिन इन फिल्मों में वो अपने चाहने वालों को निराश नहीं कर रही हैं। जैसे धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म कुर्बान में उन्होंने बहुत सशक्त अभिनय किया।

साल 2009-2010 की बेहद चर्चित फिल्म रही है थ्री इडियट्स। विधु विनोद चोपड़ा का निर्माण और राजकुमार हीरानी का निर्देशन थ्री इडियट्स जहां आमिर खान के लिए जानी जाती है, वहीं करीना कपूर की एक मस्त भूमिका के लिए भी याद की जाती है।

करीना कपूर ने बड़ी मेहनत के साथ कपूर खानदान के अभिनय की परंपरा को आगे बढ़ाया है। वो फिल्म संसार की सिर्फ सजीली हीरोइन नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए बिल्कुल जाना जाता है। एक मैं और एक तू, जिसमें वो इमरान खान के साथ नजर आईं, शाहरुख खान की फिल्म रावण, निर्देशक अनुभव

फिल्म सत्याग्रह। इसे प्रकाश झा ने निर्देशित किया है। साल 2014 में करीना कपूर की फिल्म आई सिंघम रिटर्न्स। इसके निर्देशक थे रोहित शेट्टी।

सैफ अली खान से ब्याह रचाने के बाद करीना कपूर अब जरा चुनिंदा फिल्में ही करती हैं। उनकी धूम धड़ाका मचाने वाली फिल्म रही है सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान।

2016 में करीना कपूर ने फिल्म उड़ता पंजाब में काम किया। इस फिल्म के निर्देशक थे अभिषेक चौबे और इस फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। साल 2018 में करीना कपूर ने शशांक घोष की फिल्म की

0: साल 2020 में करीना कपूर ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नैना की भूमिका निभाई थी। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री करीना कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: Viva.
1: ये है विविध भारती उजाले।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर
2: मार उड़ानी मार उड़ानी।
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
3: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं। आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
0: सर, आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू से शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
3: जी, बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो और यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है। तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे उससे हम लोग बाहर निकल गए।
0: आप किस शहर में थे?
3: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
0: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
3: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
0: जी,
3: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
0: अच्छा अच्छा,
3: बहुत खूबसूरत हवेली थी। मुझे आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे। बस वहाँ से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया तो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी, माताजी और हम तीनों शायद हमारे मामा के यहाँ घर गए, मुझे याद नहीं।
0: ये जो निकलने का सिलसिला है इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया।
3: हाँ,
0: और दौलत को ठुकराया।
3: दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो। और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए? क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे सितार सीखने।
0: अच्छा, ये लखनऊ की बात
3: है। ये लखनऊ की बात है। और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब
0: जी,
3: आपने नाम शायद सुना होगा
0: जी।
3: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे।

0: क्या सीखते थे, तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था, तो बाकी लोगों के म्यूजिक था, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था कि जो हमारे जैसे डैडी मतलब चोरी करके पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं, वो और फैमिली में किसी के पास आया नहीं। तो वो चीज़ मुझ में भी आई, और मुझ में डैडी को कैसे पता चली, हमारे पिताजी को कैसे पता चली कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की, मैं वो गाता था
1: बाबा।
0: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी, तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे
1: जी,
0: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरे को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी, बच्चे को कहाँ पता चलता है। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का। तो डैडी ने इसलिए वो उसने डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया
1: एक झटके में हवेली से बाहर,
0: एक झटके में हवेली के बाहर, और सीधा उस रात मामा जी के घर में या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहाँ हम लोग शायद डेढ़ दो महीना रहे। उसके बाद शायद डैडी ने किराए पर मकान लिया, मुझे याद नहीं, बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
1: अच्छा
0: जी,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
1: तो पहले आपने मटका बजाया,
0: मटका सिखाया, फिर उन्होंने तबला सिखाया
1: जी जी,
0: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कथक सिखाया
1: जी,
0: कथक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है, गाना होता है, थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहाँ से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
1: बाकायदा यात्रा,
0: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा, मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम लोग कीर्तन करते थे
1: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे।
0: और इस
1: कौन से शहरों में आप रहे उस दौरान,
0: याद नहीं लेकिन बहुत घूमे
1: जी,
0: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए हम,
1: पूरे देश में घूमे,
0: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
1: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन करते थे।
0: डैडी ने रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल
1: जी,
0: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे, वहां मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए जिस उम्र में बच्चों को खेलना, पहनना, खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र में मेरे हाथ में तबला था,
1: क्या बात है।
0: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था,
1: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे,
0: संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
1: बहुत सख्त थे, डांट मार वाला मामला था?
0: नहीं, प्यार से बहुत सिखाते थे, और टीचर बहुत अच्छे थे, हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे, बट टीचर तो कमाल थे
1: जी,
0: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं है कि म्यूजिक क्या होता है, उससे भी वो तबला बजवा देंगे,
1: वाह क्या बात है,
0: ऐसे टीचर। अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ,
1: अच्छा
0: मैं सिखा नहीं सकता, मुझसे सिखाना नहीं होता, मैं म्यूजिशियन को सिखा दूंगा कि मेरा ये पीस है, मेरा ये गाना है, इसको कैसे बजाना है, वो मैं करवा लूंगा,
1: वो तो मैंने देखा है आपको,
0: लेकिन
1: करते
0: हाँ, लेकिन सिखाना जिसको होता है वो मेरे में पेशेंट नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टीचर, टीचर इज ए डिफरेंट थिंग। तो हमारे फादर बहुत टीचर थे, हमारे बच्चे जितने भी हैं फादर के गोदी में बैठ के सीखे हुए हैं, कंधों पर बैठ के उन्होंने सीखा, हमारी प्रीति, हमारा जो बड़ा लड़का था अमर। तो जी वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है, तो वो सीखते सिखाते गाते बजाते, ट्रेनों में चलते, ट्रेनों में उतरते, बसों में चढ़ते, बसों में उतरते, 1960 में बॉम्बे

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे
0: जी,
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए, मतलब कहाँ, रायपुर फिर अहमदाबाद?
1: गुजरात पहुंच गए थे। गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में, और उसके बाद वहां से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था
0: जी,
1: कि बॉम्बे पहुंचना है।
0: उसके पीछे इरादा क्या था?
1: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना है।
0: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
1: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे तो नहीं बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे, हम लोग
0: जनवरी में
1: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं, और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा, और छोड़ा, और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
0: बम्बई छोड़ के चले गए,
1: नहीं नहीं घर में छोड़ के चले गए
0: जी जी।
1: और शाम को आए, शाम को वापस आए तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैंने कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एले एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे
0: जी जी।
1: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहाँ चले गए, वहाँ देखा उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके, तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गए।
0: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही हो?
1: 12 वर्ष।
0: अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था, और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
1: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं, डैडी डैडी के हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह
0: जी जी।
1: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
0: जी,
1: हिंदी में
0: जी,
1: जो ज्ञानी जो लोग पास करते थे तो वो ज्ञानी, जैसे आज बीए या एमए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
0: अच्छा।
1: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर
0: जी जी,
1: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
0: अच्छा।
1: आज जो पाकिस्तान में है।
0: हाँ।
1: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे
0: जी जी जी।
1: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गए थे।
0: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप
1: जी। डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई
0: जी,
1: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे
0: जी।
1: 2-3 महीने ही, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए, और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 से 2 साल सीखा हूँ।
0: क्या बात है।
1: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका, वायलिन में पोलका होता है
0: जी,
1: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया। वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको बताऊँ,
0: वो कहानी में आगे आएगा,
1: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज ही हुआ।
0: बाप रे, 10-12 घर
1: 2 साल में
0: जी।
1: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंद गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, माडूंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही
0: जी।
1: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
0: बाप रे बाप,
1: ये लोग सुन के बहुत हैरान होंगे।
0: 13.5 घंटे,
1: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक।
0: ओहो।
1: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
0: अरे बाप रे,
1: 4:30-5 बजे।
0: तो कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेलें,
1: नहीं
0: बच्चों के साथ खेलें?
1: कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि यही जिंदगी थी। डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी बात,
0: बस उसके आगे
1: माँ ने कहा है खत्म होगी बात
0: जी,
1: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता है कि मैंने कह दिया तो तुमने तुमको करना ही है।
0: कितनी सुंदर बात है,
1: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी माइंड

0: दो साल निकल गए बम्बई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर।
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन, हाँ। मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहाँ पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा।
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद शफी चाचा हैं जो बड़े डायरेक्टर हैं, नौशाद साहब के असिस्टेंट हैं
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
1: जी, बिल्कुल।
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बजे के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
1: 12 घंटे
0: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था
1: जी। जी,
0: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए।
1: हाँ।
0: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस बिल्कुल।
1: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं, वो भी मोहम्मद शफी के साथ,
0: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है बड़ा रिदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
1: अच्छा।
0: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग
1: जी।
0: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
1: मोहम्मद शफी के घर,
0: मोहम्मद शफी माहिम में। और वहाँ जब पहुंचे सब जाके हम लोग हॉल में बैठ गए, अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए
1: जी,
0: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है। तो आके कुर्सी में बैठ गए, तो सभी से बाहर आए, हाँ पीटर आजा आजा, उनका नाम पीटर था। बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे,
1: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती,
0: बहुत बड़ी हस्ती
1: जी।
0: तो उन्होंने आया, पीटर आजा आजा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट है, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता है ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने, चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई
1: नोटेशन रख दिया,
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4 में चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गए या 9 हो गए, 8 हो गए, जो भी था याद नहीं था। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटिशन, ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया, और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं। चाचा समझ गया, उन्होंने बोला हाँ तू मेरे से फट से आ, तुम बजाओ तो। और मैं नहीं बजा सका उससे,
1: अरे बाप रे,
0: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे। मैं, मुझे हुआ क्या? शाम को नीचे चले गए, फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना, यहाँ पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
1: जी,
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए,
1: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी,
0: 10 रुपए पूरे दिन के, तो सबको 10-10 रुपए दिए। तो 10 रुपए देख के ही हम सब लोग ऐसे हो गए, और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
1: तो 15 हो गए।
0: मुझे 5 रुपए और दिए, तो मुझे बोला ये 5 रुपए जो दे रहा हूँ ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे,
1: ओ
0: शायद फटी होगी
1: जी, जी
0: ध्यान नहीं है
1: जी जी।
0: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए, तो 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात,
1: इतनी बड़ी रकम,
0: इतनी बड़ी रकम कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं, डैडी ऐसे

0: उन्होंने बोला है तो मम्मी को 10 रुपए दिए, भाई जो पैसे दिए, गायूर जी को माथा टेका के आज बच्चे की पहली कमाई आई है।
1: 12 बरस की उम्र में?
0: नहीं, 14 बरस हो गया।
1: अच्छा,
0: 62।
1: जी जी,
0: 14 बरस
1: जी।
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे अगले, चलो उठो, चलो चलते हैं। कहाँ? चलो ना, निकल पड़े। तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी, दादर गए। दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं। तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी।
1: गजब।
0: 2 मेरे लिए, 1 अपने लिए, और मुझे लगता है शायद अपने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट।
1: क्या बात है।
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं डैडी को लेके गया। बोले इसको लड़के को आप बाबा जी क्या, रामप्रसाद जी क्या डालो।
1: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल जी के पिताजी।
0: प्यारेलाल जी के पिता
1: ट्रम्पेट बजाया करते थे।
0: ट्रम्पेट बजाया करते थे और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने बड़े टीचर थे वो, इतने, जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना, वो हमने महसूस की है और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है हमने
1: जी। कोई उनका नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे।
0: बाबा जी बोलते, नहीं तो अदरवाइज पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
1: जी।
0: ये बाबा जी थे हमारे,
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने।
0: महत्वपूर्ण शिष्य था, और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूँ।
1: बहुत सख्त थे वो
0: दूसरों के लिए,
1: आपके लिए नहीं?
0: मेरे लिए।
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे?
0: लाडला बच्चा भी कहते थे और मुझे राम सिंह कहते थे।
1: अच्छा।
0: ये कहते ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था।
1: हाँ।
0: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे। राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे। इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटरी में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है,
1: राम सिंह जी की देन है जी।
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
1: नोटेशंस,
0: नोटेशन लिख रहे हैं।
1: गजब।
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म हुआ, उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी।
1: ये रफ्तार,
0: ये रफ्तार थी। जैसे
1: टाइप कर रहे हैं,
0: टाइप करते ना, जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा ऐसा लिखते थे वो
1: जी।
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे, ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह।
0: सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो बट ये मेरा राम सिंह है।
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे
0: जो भी था
1: उस वक्त। प्यारेलाल जी,
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था।
1: अच्छा।
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमणि।
1: हाँ, 63 में आ गई थी।
0: 63 में आ गई थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था, और प्यारे भी वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे। उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
1: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
0: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा।
1: अरे वाह वाह।
0: मैं भी उनके पास गया था। तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा, और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पे किसी को दिया नहीं जाता, आमतौर पे किसी को भी ये चीज नहीं मिलती। उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन।
1: अरे बाप रे। और आपकी इतनी कम उम्र?
0: इतनी कम उम्र, ये शायद 63-64 की बात है। मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े
1: जी जी, शेख मुख्तार,
0: शेख मुख्तार, उनकी फिल्म थी वो।
1: वाह।
0: 6 फुट के थे,
1: 6 हड्डे कट्टे,
0: उनकी फिल्म थी वो। इनका बैकग्राउंड म्यूजिक चाचा कर रहे थे। वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया, और एक हमारे साथ और भी थे वो लिखा हमने। 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया। आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ है,
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
0: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
1: बाप,
0: 15-16 साल की उम्र।
1: कमाल।
0: वहां से कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा, नौशाद साहब का
1: जी।
0: तो हम सब बजा रहे थे, मैं सब 3rd रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था। तो मुझे ऐसे बोला तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
1: वाह वाह।
0: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन? मैंने कहा हाँ चाचा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब की, जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है।
1: कौन सी फिल्म है
0: वो मुझे याद नहीं। क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो था फिल्म नहीं हुआ करते थे
1: जी जी जी,
0: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करते थे, टाइमिंग। अच्छा। पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस। आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना।
1: हाँ, वो ऐसा नहीं होता था।
0: ऐसा नहीं होता था।
1: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने बजाया?
0: तो वो सोलो बजाया, वो मेरा पहला सोलो था।

0: वाह वाह।
1: आप देखिए वो एक अंधेरा सामने छा गया।
0: हाँ।
1: मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम।
0: क्या बात है।
1: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब उसमें थे।
0: वाह।
1: पीटर साहब और डोनाल्डो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
0: गजब गजब, क्या बात है,
1: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तो ने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
0: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं। ओहो,
1: ये 64 की बात
0: जी। अब
1: फील ही फील है।
0: ये कहां से आया,
1: ये लग गई मेरे बात में, कहा फील क्यों नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: पहला सोलो था
0: जी,
1: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं
0: जी,
1: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
0: बिल्कुल।
1: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
0: एक वायलिनिस्ट की
1: Somebody's there.
0: एंट्री हो गई।
1: Somebody's
0: जी there. बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में हैं तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए। आप बताएंगे कौन सा गाना सुने।
1: 1960 में फिल्म आई थी मुगल-ए-आज़म, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो हाँ क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा काम
0: जी।
1: हम लोग सब यही कहते थे यार ये ऐसा काम कैसे हो सकता है,
0: करिश्माई काम है,
1: करिश्माई काम। और वो गाना देखिए 1960 का जो गाना है रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा।
0: हाँ।
1: जब प्यार किया तो डरना क्या,
0: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं,
1: इस गाने को सुनते हैं।

कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहां मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये उनको स्टूडियो करना है,
4: पूरा म्यूजिक भी,
3: पूरा म्यूजिक
4: मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
3: सब, सब सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है। तो मतलब वही
4: भव्यता,
3: भव्यता चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो हमारे पास मुगल आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
4: जी बिल्कुल,
3: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
4: सारे हैं,
3: और उस ट्रैक में
4: हिसिंग भी है।
3: ये चल रही है,
4: अरे बाप रे,
3: 1960 की पिक्चर है, इसको कहाँ से निकालोगे। तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूँ। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
4: जी जी
3: 50% अभी भी था। वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय, तनय गजर, जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
4: जी जी,
3: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए,
4: जी।
3: उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
4: बाप रे,
3: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा पूरा। जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया,
4: जी।
3: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गाना, क्योंकि गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने, लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है। ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
4: मैं जानता हूँ।
3: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है। पूरा स्कोर लिखा गया,
4: बैकग्राउंड का पूरा,
3: बैकग्राउंड का पूरा स्कोर लिखा गया है।
4: ओ गॉड,
3: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए।
4: और गानों के नोटेशन करने में
3: भी,
4: क्योंकि
3: वो भी, हाँ, वो
4: अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे कि वायलिन के ये हुए, वायला के हुए।
3: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किया था, हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
4: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए,
3: पार्ट बाय पार्ट।
4: अच्छा,
3: उस टाइम तो लाइव थे,
4: जी यहाँ तो अभी ट्रैक थे।
3: और इस मुगल आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 वायोला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
4: बाप रे बाप रे,
3: ये हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए, यहाँ रहे 7 दिन। 7 दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
4: गजब,
3: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया। ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लग गए इसको।
4: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
3: आराम से।
4: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए,
3: पूरे,
4: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई,
3: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको, आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
4: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक, जो डॉल्बी आप लोगों ने किया था,
3: जी, जी।
4: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूस बम्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसेस है, बहुत लंबे, बहुत लंबा पीस है, 2.5-3 मिनट
3: सारे किए हुए,
4: जी।
3: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो सितारे बज रही है, वो रखा हुआ पहले का।
4: हाँ हाँ, उसी के ऊपर बजा दिया,
3: उसी के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है।
4: जैसे, इस तरह से,
3: जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
4: इस तरह से मुगल आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
3: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात ये है, देखिए मुगल आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगल आजम के ऊपर 1,60,00,000 रुपया खर्चा हुआ था,
4: जी,
3: उस टाइम पे। मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो,
4: बिल्कुल।
3: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा हुआ। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ,
4: जी जी,
3: बकायदा बिल्स है हर चीज के, 1 करोड़ रुपया पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है,
4: जी।
3: मतलब उस टाइम पे भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
4: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
3: आज भी अगर 6-7-7-8 करोड़ खर्चा किया है तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने,
4: जी बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
3: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
4: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए।
3: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाई,
4: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद,
3: क्योंकि क्या उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज किया,
4: बहुत बड़ा वो जिस तरह से ऊपर जाता है। वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आ गया।
3: ये सुनाइए,
4: सुनते हैं।

0: देखना पड़ा, क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी।
0: कि ये संगीत आपने,
1: यहाँ मैं एक बात बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत
0: जी,
1: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर
0: जी जी जी।
1: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है, वायलिंस की डबिंग है, वो सब लिखना वो सब उसने किया हुआ है। बात बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई
0: जी जी जी। क्या बात है। वापस चलते हैं 1964 के जमाने में, जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
1: देखिए जी, नौशाद साहब क्या थे, उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि मोहम्मद शफी साहब थे
0: जी,
1: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल गया
1: जी, क्योंकि शफी साहब काम करते थे, हम लोग बजाते थे जी। जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ। मैं घर गया
0: जी,
1: चाय पीने, चाय पीते हैं, चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है,
0: आशियाना
1: आशिया। मैं कहा चाचा यहाँ क्या, चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए, रूम में बैठ गए, नौशाद साहब ऊपर से आए, बोले आओ सभी मियाँ, किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है। देखा तो हुआ है इसको, अपनी रिकॉर्डिंग बजाता ना, शायद वायलिन बजाता है। हाँ जी वायलिन बजाता है। तो क्यों लाए उसको यहाँ पे। मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
0: गजब।
1: क्योंकि मैं अब, मेरे से अब काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा। तुमको इतना भरोसा है इस पर। बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा, कर लेगा ये पूरा काम। बोले हाँ। वो पहली मुलाकात थी।
0: वाह वाह वाह। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही
1: है। नौशाद साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी, वो बैठते थे, एक सामने कुर्सी थी
0: जी जी,
1: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ, तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी जगह,
1: आज भी वो कुर्सी। और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठते थे,
1: बड़े बड़े सिंगर बैठे
0: जी,
1: गुलाम अली साहब से ले आमिर खान साहब से लेकर परसुल्ले साहब के, रफी साहब, लता जी, आशा जी, सब उस कुर्सी बैठते। वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे बैठा जी। आओ उत्तम, आओ उत्तम साहब। ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है
0: जी जी।
1: तहजीब और इज्जत
0: जी,
1: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
0: क्या बात है।
1: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना
0: जी,
1: कभी तुम बोलते नहीं सुना। तो मुझे उत्तम साहब, तो मैं उनको जी, नाम तो मैं उनका ले नहीं सकता था, तो जी जी जी करके बात करता था या अंकल बोल देता था। कल सफी मियाँ आपको छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का। मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए ये बात है 72 की
0: जी जी।
1: क्या उम्र होगी मेरी, 48, 58, 68, 24 साल की उम्र
0: जी जी,
1: 23-24 के
0: जी।
1: तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए
0: जी,
1: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े, बोले हाँ सही बात है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूँ।
0: अरे बाप रे।
1: उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का।
0: हाँ।
1: तो मैंने कहा अंकल 750 रुपये रखेंगे आने का।
0: हाँ हाँ।
1: वैसे उस टाइम पे 200, 250, 300 रुपये में काम कर रहे थे लोग।
0: तो ये 3 गुना मांगा,
1: 750 रुपये आ गए
0: जी।
1: बोले ठीक है,
0: 750 रुपये एक गाने
1: एक गाने का।
0: गजब।
1: बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
0: वाह।
1: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
0: बाप रे 35 साल नौशाद साहब के साथ काम करना, मतलब एक पूरे युग को जीना।
1: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम हाँ कितना नजदीक आ गए होंगे, कितना समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहाँ गई सीखने के लिए।
0: अच्छा।
1: हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है
0: जी।
1: तो प्रीति बोलते डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अबू के पास
0: अबू
1: ले चलिए। मैं ले गया, वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं

0: उत्तम साहब ने रहा, मैं उत्तम हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह, प्रीति की वजह से ही हुआ।
0: प्रीति की वजह से, मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो मतलब वो अबू और वो प्रीति, अबू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम कहाँ है? मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब
1: नाम लेके पुकारते
0: हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी,
0: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
1: हाँ।
0: पता नहीं क्या बात है।
1: अरे
0: हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो, उत्तम जी आ गए बेटा।
1: वाह।
0: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया, और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
1: जी, नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, यहाँ पहले उनका एक गाना सुनते हैं। अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है, उसको
0: नहीं, पहले नौशाद साहब का एक गाना सुना दीजिए, जो मेरा उनके साथ पहला गाना है।
1: जी,
0: माई फ्रेंड का गाना है वो।
1: हाँ हाँ,
0: रफी साहब का गाया हुआ गाना है। नैया मेरी बहती जाए, ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
1: वाह वाह वाह, ये सुनते हैं, उसके बाद
0: ये सुनिए, उसके बाद फिर हम मदन साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का।
1: जी जी।
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुनाया, हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी। ये शायद 1963-64 की बात होगी।
0: जी।
1: जब उनके यहाँ डैडी 2-3 दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे।
1: बिजी रहते थे, और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया। मदन साहब मिल गए बाहर, उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके।
0: जी जी।
1: वो बाहर बैठे हुए, तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए, तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके, हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए। नमस्ते की उनको, हाँ जी आइए बैठिए। बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है?

0: इज माई फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको,
1: इज माई फादर,
0: इज माई फादर. तो मतलब सबको अच्छा नहीं लगा. व्हाट डू यू मीन सर? वो कहते हैं ना, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन.
1: ओ
0: यू मीन दैट? यस. हाँ, क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है. अच्छा सुना. तो मैंने वायलिन खोली, वायलिन खोली और वही पोलका बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया. तो फेलिक्स,
1: जिसकी दास्तान आप पहले बता चुके हैं,
0: फेलिक्स हेरडे साहब ने वो पोलका सिखाया था.
1: जी,
0: वो पोलका कुछ 9-10 मिनट का है. और वो पोलका ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है, तो वो सुनते रहे.
1: जी,
0: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था. सुनते रहे 10 मिनट के बाद में जब मैं ऐसे, मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे. फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ. तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया.
1: गजब.
0: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया.
1: वाह.
0: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए. यूनुस जी, आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है, आई वॉज कंडक्टिंग.
1: क्या बात है. मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा.
0: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था.
1: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरा ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म.
0: तो
1: मौसम,
0: हाँ, इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी. तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था.
1: मास्टर जी यानी सोनिक जी.
0: सोनिक साहब, हाँ. इनका एक अरेंजर आ गए थे, ज्ञान वर्मा.
1: जी जी जी.
0: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई. जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था.
1: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे.
0: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे, अरेंजर मुझे याद नहीं.
1: जी
0: जी. रवि साहब क्या, उन्होंने बहुत काम.
1: हाँ,
0: रवि साहब क्या, बहुत काम किया. तो हम सब बजाते थे साथ में. ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था. तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग. तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए. तो मदन साहब आए 9:45 के करीब.
1: जी.
0: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब. हाँ ज्ञान सुनो. तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने. फिर उन्होंने बोला म्यूजिक वन सुनाया. तो वो बैठ गए. एक्चुअली खड़े हुए थे, तो कुर्सी पे बैठ गए. और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
1: पसंद नहीं आ रहा है
0: कुछ, इनको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा. तो गाना था, हर तरफ अब यही अफसाने. तो ये गाना था और मैं बजाते चले गया.
1: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गाना.
0: हिंदुस्तान की कसम. और मैं ये गाना बजाता चले गया. 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है और एक लड़का वायलिन बजा रहा है.
1: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा
0: है, उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहता.
1: ये किस धुन पे किया था?
0: पता नहीं, आई डोंट नो.
1: जी,
0: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
1: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था. लेकिन फौजी शख्सियत.
0: लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा.
1: जी,
0: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था.
1: हाँ,
0: मैं उनका ही गाना दारारी यही बजा रहा था. बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
1: अपनी तरफ से.
0: बज गया.
1: वाह.
0: मैंने जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया. तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते, व्हाट डिड यू प्ले? मेरे तो पसीने छूट गए. एसी में मुझे पसीना आ गया. सर, आई सेड सर नथिंग. व्हाट डिड यू प्ले जस्ट नाउ? एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी. मैंने, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ अपने. सर, या आई प्लेड दिस. ये बजाया मैंने.
1: हाँ, वो एक पीस. आप वायलिन लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं हमको.
0: लाया तो हूँ.

0: ज्ञान, ये जो उत्तम बजा रहा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वायलिन होगा एंड उत्तम विल प्ले सोलो वायलिन।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: यहाँ से युवराज जी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन,
0: बहुत गानों में सोलो बजाया
1: जी। कुछ गानों का जिक्र हो जाए,
0: मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं
1: जी।
0: हाँ, ये गाना याद है मुझे।
1: बाकी याद नहीं है। जी
2: हर तरफ अब

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: ऋषि पाठक की आवाज में यह पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे। अनुमान अंश फिल्म से ऋषि पाठक का ही संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

प्यार का पहला खत। इस एल्बम से आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये कलाम, जिसे लिखा राजेश रेड्डी ने। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कासिम कुरैशी का कलाम भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में, और इसे हमने लिया है नशीमन एल्बम से।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: इंतजारे सबा इस एल्बम से पंकज उदास की आवाज में आप सुन रहे थे जमीर काजमी का कलाम। अली गनी ने इसे संगीत से सजाया।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

रूपमा राठौर, सोनू निगम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सरफरोश फिल्म से ये गीत, इसरत अंसारी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मोहब्बत कर ले रे।
1: मोहब्बत कर ले, इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे शामक डावर और साथियों की आवाज, तरुणानंद, नितिन रायकवाड़ के बोल और राम संपत का संगीत।
2: जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
3: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

आई लव यू इस एल्बम से उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा फैज अनवर ने, संदेश शांडिल्य का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

गणेश हेगड़े की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। मनोज संतोषी और विजय शर्मा ने इसे, माफ कीजिएगा, विक्की शर्मा ने इसे लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से कमाल खान की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है वी के मेहता ने, कमाल खान का संगीत।

सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से आप सुन रहे थे कमाल खान की आवाज में गीत, वी के मेहता के बोल, कमाल खान का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कैलाश खेर की आवाज में सुनिए अगला गीत, जिसे उन्होंने लिखा है। कैलाश खेर, परेश और नरेश ने संगीतबद्ध किया है। एल्बम है कैलाशा।

कैलाशा, इस एल्बम से कैलाश खेर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में

0: न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकुवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने 2रा स्थान प्राप्त किया जबकि चीन ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुंटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

गीत गाता चल। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। आज है फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि, तो उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म से ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि पर उनकी फिल्मों के गीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपने सुना दोस्ती फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जीवन मृत्यु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? बच्चा! इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या को याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर उन्हीं की फिल्मों के गीतों के जरिए। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत उपहार फिल्म के इस गीत में।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन के बोल। उन्हीं के संगीत से सजा था ये गीत सौदागर फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं अखियों के झरोखों से। इस फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं संगीत और बोल रविंद्र जैन का।

0: आंखों के झरोखों से इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बरजात्या की फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं।

चित्चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे येसुदास और हेमलता की आवाजों में, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं पिया का घर फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। येसुदास हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: जंबो जेट जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गद्यांश में नयन नय निगाहें पलक आंखों की बात होंगी। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज की भारत एक सुंदर कविता के रूप में जो प्रेम के शुरुआती आकर्षण, उसकी मासूमियत और फिर अचानक मिले धोखे या जुदाई के दर्द का बहुत ही मार्मिक और सजीव चित्रण करती है। इसमें आंखों और नजरों के माध्यम से बयां होने वाले एहसासों की गहराई को बखूबी उकेरा गया है। प्रेम की कोमलता और उसकी बिछोह की कसक का बहुत ही संतुलित और काव्यात्मक मेल देखने मिलता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि कभी पलक झपकते ही कोई ख्वाब सा सामने से गुजर जाता है और आंखें उसे पकड़ने को फिर उसी दिशा में ठहर जाती है। निगाहें भी कितनी अजीब जुबान होती है, फिर बिना लफ्जों के जाने कितनी दास्तां कह जाती है। कभी नैनों की झलक से प्रेम का इजहार हो जाता है तो कभी पलकें झुकाकर दिल अपने राज छिपा लेता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, न मनचाहा होता है। कुदरत सबको नवाजती है प्यार प्रेम और खुशी से, सब्र जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी का कहना है कि आंखों की भी अपनी एक जुबान होती है, बिना लफ्जों के कह देने की। कभी एक नजर में कोई अपना सा लगने लगता है, कभी वही नजर लौट जाए तो दिल में एक खाली सी जगह रह जाती है। आंखों में खिले छोटे से ख्वाब भी अजीब होते हैं, पलक झपकते ही बिखर जाते हैं, मगर उनकी किरचें देर तक यादों में चमकती रहती है। इश्क भी आंखों का ही कोई पुराना किस्सा है, जो कहा कम जाता है महसूस ज्यादा होता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सभी कार्यक्रम उन्हें अच्छे लगते हैं और वो देश देश भर में सारी जगह जब ये कार्यक्रम जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे एक और साथी का कहना है कि आज बातें नजरों की आंखों की है, पर यदि आंखें ही नम हों या आंसुओं से भरी हों तो कोई कैसे लिखे क्या लिखे। किसी ने आंखों में आंसू दिए, हम चाहते तो बदले में उसकी आंखें भी नम कर सकते थे, मगर दिल ने कहा छोड़ दो। हर दर्द का जवाब दर्द से देना जरूरी नहीं होता। हमने उसे माफ किया, कोई सजा नहीं दी, बस दिल से एक दुआ निकली, तुम जहां भी रहो खुश रहो और कभी किसी के दिल को इतना मत दुखाना जितना मेरा दुखा है। दिल में दर्द हो फिर भी किसी के लिए नफरत ना हो। भाई हम तो यही कहेंगे कि आपकी आंखों में जो आंसू आए हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। और ये गीत सुनिए, शायद इस गीत से आपको कुछ आराम हो। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

यहूदी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाजें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि कुछ साथी कह रहे हैं कि अनसुना सा गीत है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि आज सोच रहा था कमेंट है ना करूं, फिर दिल ने नहीं माना क्योंकि आप हम जैसों के कमेंट की ओर ध्यान ही नहीं देते। भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी कमेंट सामने आते हैं हम उन्हें ज़रूर पढ़ते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, गुस्से वाला ही कमेंट सही, नाराज़गी वाला कमेंट ही सही शामिल तो हुआ। हमारे एक साथी कह रहे कि नज़रें मिली तो लगा जिंदगी मिल गई, धड़कनों को जैसे एक नई साज मिल गई, पर वो मुस्कुराहट महज एक छलावा थी, वादों की कश्ती बीच भंवर में खो गई, आस जगी थी सूने दिल में जो पल भर में आंसुओं की धार में बह गई, खोए हुए उस साए को तलाशती ये राहें जहां कभी चाहतों के हंसी सिलसिले हुए, निगाहों के खेल भी बड़े अजीब होते हैं, कभी पास लाते हैं तो कभी दूर कर जाते हैं, वो जो पलकों को उठाकर मुस्कुराना तेरा, अब वही यादें सीने में तीर सी चुभती हैं, कभी इन आंखों में वफा का नूर था, आज वही नैना तन्हाई के साए में अंगारे हुए। भाई क्या बात है। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि शब्दों से बनने वाले गीत यदि लिखे जाएं तो पहले तो शब्द ही इतने हैं कि उन्हें गिनने और गिनकर लिखने में कम से कम आधे घंटे में पूरे हो जाएं तो गनीमत है, फिर उन पर गीतों के चयन प्रक्रिया में तो यदि 4 से 6 घंटे लग जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। भाई पूरी के पूरे फिल्मों के गीतों को खंगालते हुए चयन करना कोई तो 1-2 घंटे का काम है नहीं, फिर कार्यक्रम तो केवल 1 घंटे का है। फिर भी भाई कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद के गीत लिख सकते हैं और

यही तो इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि आपकी पसंद के गीत और हमारे गीत कितने मिलते हैं, यही तो पता चलेगा। और शब्द हो सकता है कि आप कोई नए शब्द चुन लें उस इबारत में से जो हमें भी ना नजर आए हों, और ये बातें ही इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाती है। तो अपनी जो प्रक्रिया है आप जारी रखें, हमारी प्रक्रिया हम जारी रखते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे क्या देखें। और हमारे एक और साथी कहती हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, मोहब्बत का, प्यार या प्रेम का या जीवन का कोई भी गहरा भाव, वो अक्सर शब्दों का मोहताज नहीं होता और आंखों से ही बयां हो जाता है। आंखें दिल का आईना होती हैं, जब जुबान खामोश होती है तब भी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। शब्दों में झूठ छुपाया जा सकता है लेकिन आंखों की चमक या उसकी नमी कभी झूठ नहीं बोलती। प्रेम का असली स्वाद और सुकून किसी की सिर्फ एक नज़र से महसूस किया जा सकता है। बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखकर पूरी बात समझ लेना सबसे खूबसूरत रिश्ता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि हमको हमारी गणित की अध्यापिका का खतरनाक तरीके से आंखें निकाल कर देखने का अनुभव आज तक याद है। उनकी आंखों का एक इशारा सारी क्लास को पल भर में ही खामोश करवा देता था। भाई ऐसे ही आपको याद आ रही है, किनकी आंखों का इशारा याद आ रहा है? क्या कोई बेहतरीन अच्छा किस्सा भी हो सकता है, कुछ खूबसूरत किस्सा हो सकता है, कुछ ये डराने वाला किस्सा हो सकता है? अक्सर तो जब घर में मेहमान आते हैं तो भी आंखों का इशारा बहुत किया जाता है। कुछ ऐसा अगर आपको याद आए तो भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल याद करके बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का वो गीत है और लिखा किसने है।

0: इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल।
1: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने दिया।

0: हमारे साथी अलग अलग बातें भी लिख भेज रहे हैं। हमारे साथी मोहम्मद रफी की आवाज़ पहचानना तो बिल्कुल पहचान ही सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुबान से तो झूठ पकड़ा नहीं जाता मगर आंखें सब बयां कर देती हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जो बात जुबान नहीं बोल पाती आंखों से पता चलता है। कई बच्चे तो आंखों में ही डरते हैं, इन्हीं आंखों में हम कई सपने सजाते हैं लेकिन आंख खुली और सपना जैसे आंखों से ओझल हो जाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि क्या कोई बता सकता है कि मेरा कमेंट शामिल क्यों नहीं होता, शायद किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। तो शायद जवाब भी आपको साथ ही साथ आपने दिया है। हालांकि कमेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी कुछ कमेंट्स उनमें गुम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने आपकी बात पढ़ी हो तो हम ज़रूर उसे शामिल कर लेते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जब आंखों में आंसू हो और दिल जानता हो कि इन आंसुओं की वजह कौन है, फिर भी दिल उसी के लिए सजा नहीं दुआ मांगे, तो समझिए वहां नफरत से कहीं ज़्यादा दोस्ती और इंसानियत बची हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नयन निगाहें आंख लोचन चक्षु पर बातें होंगी। आंखों का एक गुणधर्म है, वो अधिक खुशी और गम दोनों पर छलक जाती हैं। वहाँ क्या बात आपने कही। और एक खेल हुआ करता था जो बचपन में हम खेला करते थे, जिसमें एक दूसरे से नज़रें मिलाकर रखे रहना होता था बहुत लंबे समय तक, और जो पहले पलकें झपकाता था वो हार जाता था। तो क्या आपने वो खेल खेला है और क्या आप उसमें जीता करते थे या नहीं, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम इस गाने को जब सुनते हैं ज़रा नज़रों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, तो अजीब सी उधेड़ बुन में होता हूँ कि नज़रों का निशाना भी कहीं चूक जाता है। ये तो ऐसा कमाल का हथियार है कि बिना किसी रसायन बिना टेक्नोलॉजी का ऐसा बम है कि जिस पर गिरता है हाय करके बस रह जाता है। आमना सामना हुआ कि दुश्मन चारों खाने चित, वो दाएं बाएं भाग भी नहीं सकता, खुद ही शिकार के पास पहुंच जाता है और समर्पित भाव से निवेदन करने लगता है कि दिल जिगर के साथ मेरी सारी संपत्ति सब तुम्हारा है, बस हमारी जान बख्श दो। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने मजे के तौर पर लिख दी है, लेकिन कभी कभी तो निशाना चूक भी सकता है। तो क्या कभी निशाना चूका आपका, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी ने बड़ी मजाहिया बात लिखी कि आंखों ही आंखों में मोबाइल बस गया, देखते ही देखते चश्मा लग गया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, हमें सारी बातें आप बताइए। और कार्यक्रम ही कुछ ऐसा है जिसमें आपकी बातें आप हमें बता सकते हैं, जो कार्यक्रम में शामिल भी हो सकती हैं। और कार्यक्रम में आप शामिल हो रहा है एक ऐसा गीत जिसके बारे में आप हमें बताइए कि किस फिल्म का गीत है।
1: झुके जो तेरे नैन

0: कंगन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजों में। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जब दो दिल एक दूसरे की धड़कन सुनने को बेताब हों तो दिल की बातें बताए बिना नहीं रह सकते, पर परिस्थिति वश कहा भी ना जाए तब भी आंखें एक दूसरे से बात करती हैं, कोई शोर नहीं करती पर चोर जरूर करती हैं। वही हमारे एक साथी का कहना है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो किसी के सामने कुछ भी बोल देता था, और जब मैं आंख से इशारा करती कि चुप रहे तो सबके सामने बोलता था कि मम्मा आंख से इशारा करती हैं, तो सब हंसा करते थे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अब बेनी बुनना सीख रही हूँ, 35 टाके की नातू के लिए इधर उधर ध्यान गया तो कांटा चूक गया। ऐसा होता है, मतलब उसमें नजर ध्यान रखना जरूरी है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के सभी पति अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नाचते हैं, यही सत्य है। भाई कितना सत्य है तो सब पति पत्नी ही बता सकते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, वो आंखों के बारे में कह रहे हैं कि निगाहों से शुरू हुआ जो सफर वो इशारों में खो गया, कभी हंसाया इन आंखों ने तो कभी अशकों में भिगो दिया एक नन्हा सा सपना जो सजाया था पलकों पर, न जाने वो पलक झपकते ही कहां गुम हो गया। तो हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि नजर भी अजीब शह है, दो की चार हो जाए तो प्यार कहलाती है, झुकी झुकी नजर हो तो प्यार का इजहार होती है, कुछ लोग बॉस की नजर में चढ़ने के लिए दिन को रात और रात को दिन कहने से नहीं चूकते, दूसरी ओर मेहनती आदमी देर से ही सही मगर नजर जरूर आता है, उधार लेने वाला नजरें चुराता है और वसूलने वाला उसे खा जाने वाली नजर से देखता है। भाई क्या बातें कही आपने। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब किसी से नजर मिलती है तो अक्सर बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाती है, आंखों में खिले छोटे से सपने, नजरों के इशारे और दिल में उठती प्यार की नजरें, प्यार की लहरें मन को एक अनोखी खुशी देती है, कभी नजरें उठती हैं तो प्रेम झलकता है, कभी झुकती हैं तो शर्म।
1: आकाशवाणी मुंबई, नंदिनी मथुरे राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आजपासून 3 दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 7 नवनियुक्त न्यायाधीशांचा शपथविधी, स्वतःच्या नावावरचं सिम कार्ड इतरांना देऊ नये तसंच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सिम कार्ड मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये असा दूरसंचार विभागाचा इशारा, आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंची विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये यशस्वी आगेकूच। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आजपासून 3 दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर आहेत। उद्या त्यांच्या हस्ते केवडिया इथे एकता नगरमध्ये 72वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील। त्यानंतर येत्या बुधवारी त्या महाराजा सयाजीराव बडोदा विद्यापीठाच्या 75व्या वार्षिक दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय कारकिर्दीला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत।

बाजीगर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शाहरुख खान इसमें नायक हैं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं और अगर खुशी होती है तो आंखों में ही चमक पहले होती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि इस समय मेरी नजरें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के ऑफिशियल फेसबुक के पेज पर सुरीला सफर की पोस्ट पर है और कान रेडियो की तरफ जो सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो उसका जवाब देने के लिए इस तरह से बिल्कुल लगे हुए हैं ऐसा कहना होगा। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि जब देखूं गुलाबी लाल पीली अंखियां, ये बात तो एक डॉक्टर किसी मरीज से पूछते हैं, पता नहीं कौन से फिल्म का गीत है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि निगाहें कभी खामोश नहीं होती, बिन कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं, कभी प्यार की रोशनी बनती है, कभी दर्द की कहानी कह जाती है। किसी की एक निगाह में अपनापन मिलता है तो किसी की एक नज़र में पूरा संसार। निगाहें दिल का आईना होती हैं, जो छुपा हो दिल में कर देती हैं इजहार। वहीं हमारे एक साथी ने एक सवाल पूछा है, बड़ा ही गंभीर सवाल। उनका कहना है कि अगर किसी की नज़र लग जाए तो नज़र उतारने के लिए क्या करें। भाई हमें तो इसके बारे में यही पता है कि अगर किसी की नज़र लग जाए तो आप भी उन्हें नज़र लगा दें। वैसे हमारे साथी बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आंखों के कलर की बात हो गई, रंगों की बात हो गई, तो कई रंग आंखों के हमने देखे हैं और उन पर गीत भी बने हैं, तो ऐसा कोई गीत आपको याद आता है और कौन कौन से रंगों की आंखें आपने देखी हैं हमें बता सकते हैं। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। बताइए किस फिल्म का गीत किसने लिखा है।

0: आवारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। असर जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना। हमारे एक साथी कह रहे कि मैं तो इकलौता बेटा था, तो माँ की आंख का तारा था, कभी आंखें तरेर कर उन्होंने हमें देखा ही नहीं। ये हमें मतलब देखा हो ऐसा हमें याद नहीं। हाँ, पिताजी ने गुस्से में पढ़ाई को लेकर आंखें लाल पीली की तो माँ ने हमेशा बचाव किया। उनकी नजरें रास्ते पर टिकी रहती जब मैं स्कूल जा रहा होता या आ रहा होता। हमारे मास्टर ने स्कूल में एक बार दो डंडे मारे थे तो माँ मास्टर को खा जाने वाली नजरों से देखकर उन्हें ऐसी फटकार लगाई थी कि वे आंखें ही नहीं मिला पा रहे थे। सारी क्लास की बच्चों की नजरें मेरी माँ पर थी। कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी पूरी बातें नजरों, आंखों और इन बातों पर लिखा। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, खुशी हो तो आंखों में चमक पहले होती है। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट किया जिसे हम हिंदी में कहने वाले हैं। हम वो कह रहे हैं कि आंखें सिर्फ हमारे चेहरे पर ही नहीं होती, बल्कि आंखें मानव शरीर में हर जगह होती। हमारे कान, हमारी जीभ, हमारे सूंघने की शक्ति, हमारे छूने की शक्ति, स्पर्श की, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी जो इंद्रियाँ होती हैं, वो उन सभी की अपनी अपनी एक आंखें होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चमकदार और सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली ये जो आंखें हैं हमारी, वो हमारे दिल की आंखें होती हैं माफ़ कीजिएगा। और उनका कहना है कि इन आंखों से हम बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें दूसरे लोग नहीं देख सकते। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हेलो, फरमाइश की रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हमारा नंबर नहीं लगता। भाई, हमारी तो यही उम्मीद है, यही हमारी शुभकामना है कि आपका नंबर भी ज़रूर लगेगा। लेकिन अभी नंबर आ गया है गीत का, तो दूसरा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और इस गीत को किस अभिनेता पर फिल्माया गया हमें बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।
1: निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहा।

पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और देव आनंद इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात आपने सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे नसीब में आंखें मिलाना लिखा ही नहीं था, बच्चे भी मुझसे नहीं डरते क्योंकि मैं शासन नहीं करना चाहती। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें मिलाने का खेल मैंने खेला जो हमने पूछा था और हमेशा मुझे हार मिली है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नहीं नाच सकता और ये बात मेरे सभी दोस्त जानते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब कोई मेहमान आता था तब हम सारे बच्चे वहां घूमते टहलते रहते थे क्योंकि टेबल पर सजाई गई भोज्य सामग्रियां हमें खूब लुभाती थी कि शायद हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन फिर माँ और ताई जी आंखों से इशारा करती कि चलो भागो यहाँ से। जब उनका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता तो सीधे साफ शब्दों में बोला जाता कि जाओ बाहर जाकर खेलो। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी या फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे तो आंखें काली भूरी सुनहरी नीली देखी है, पर फिल्मी गीतों में गुलाबी आंखें और कत्थई आंखों वाली लड़कियां भी देखी हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गुलाबी आंखें छोड़कर सभी आंखें हमने देखी होंगी। और एक साथी कह रहे हैं कि पड़ोस में जब कोई मेहमान आता था तो अपनी बेटियों को आंखों के इशारे से समझा देती थी कि किस प्रकार की चाय और नाश्ता देना होता है। आंखों के रंग से मुझे एक बात याद आई, हमारे एक साथी ने कहा कि लंकापति रावण की आंखें हमेशा लाल हुआ करती थी। भाई इसके बारे में हमें तो कुछ नहीं पता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बांके बिहारी जी का वृंदावन में पर्दा जब बार बार बंद और खुलता है ऐसा मानते कि ये छलियां हैं, कहीं किसी से अगर उनकी आंखें मिल गईं तो उसके साथ ही चल देते हैं। तो चलिए हम भी चल देते हैं इशारों इशारों में बातें करने, क्योंकि कार्यक्रम का अंतिम गीत पहुंच चुका है आपके सामने और अब आप बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और वक्त ने इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: अपने शहर की सड़क के किनारे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और बस वाहन चलाने वालों पर एक नजर डालिए। आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने दोपहिया या चौपहिया वाहन चला रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक है? मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने का मतलब है खुद को और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को खतरे में डालना। ये बातें मीडिया के जरिए बार बार समझाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग उम्र के लोग गाड़ियां चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। गाड़ी रोककर दो मिनट बात करके फिर आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो गाड़ी चलाते हुए ही की जा सकती है और खुद को और दूसरों को खतरे में डालना जरूरी है?
1: ए भाई।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: दरअसल वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने शहरों की सड़कों को सुरक्षित बनाएं। हम सब यातायात के नियमों का पालन करें। हम सब दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करें, चाहे वो हमारे फैशन, हमारी स्टाइल के अनुरूप क्यों ना बैठता हो। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अपने बाल खराब हो जाने के डर से या अपना चश्मे की स्टाइल नजर ना आने के डर से हेलमेट लगाना पसंद ना हो, लेकिन हेलमेट आपकी जान की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हेलमेट के बिना बिल्कुल सफर पर निकलना ही नहीं चाहिए।
1: अरे

तमाम शहरों में ट्रैफिक सिग्नल इसलिए लगाए गए हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से चले, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की लाइट हरी होने से पहले ही वो अपने वाहन दौड़ा देते हैं। जरा सोचिए कि दूसरी तरफ से तेजी से आ रहा वाहन अगर आपके वाहन से टकरा जाएगा तो आपकी ये जल्दीबाजी आपको कहां पहुंचा देगी, ये सोचना कितना खौफनाक लगता है ना। जो सड़क सुहानी होती है वही सड़क आपके लिए जानलेवा भी बन सकती है। आइए हम अपनी और तमाम लोगों की हिफाजत करते हुए एक साथ अपनी सड़कों पर चलते रहें, किसी के लिए शामत या मुसीबत न बने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership, ये रणनीति

0: साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
2: Today we have around 1150.
3: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
2: Which will make a big change in times to come.
1: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
2: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
3: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
2: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
1: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
3: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
4: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
5: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और

0: सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
2: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाग चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
1: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
3: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
4: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
3: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
5: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
3: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।

0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मधुमति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं परवरिश फिल्म से ये अगला गीत। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के बोल, दत्ताराम वाडकर का संगीत।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में काला पानी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं फागुन फिल्म के इस गीत में आशा भोसले को। कमर जलालाबादी ने से लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: फागुन फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले को, कमर जलालाबादी ने इसे लिखा ओपी नैयर की तर्ज।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: सीआईडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सुनते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले,
1: अरे रे रे, इन बाजारी लाउंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो, बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट है। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा है। चाहे तुम MA, DPhil और DLit ही क्यों

0: हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं न बदहवास हो, पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का महीने भर कैसे चले। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम करता कौन है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं।
1: मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, जी हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले,
0: कनकव्वे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है।
1: संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक झुंड पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: का दूसरा भाग और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है
1: जी।
0: तो हमारे सुनने वाले भी बताएं कि क्या उनके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो चीज़ों को भूल जाते हैं और वो उनकी इस चीज़ को देखा अनदेखा कर रहे हैं। हमारी सखियां अक्सर कई बार अपनी चीज़ों के साथ में बहुत चीज़ों को हल्के में लेती हैं।
1: हाँ।
0: और जब हल्के में हम चीज़ों को लेते हैं तो आगे चलकर वो कोई बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम सुन लें एक गीत
1: जी।

नेहा, अभी हमने सुना सीआईडी फिल्म का गाना जिसमें आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: देखिए कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली।
3: और हमें तो याद है ये सारी चीज़ें, और हमें ये भी याद है कि आज विश्व अल्जाइमर दिवस है और हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी जो भूलने की बीमारियां हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करें और इससे जुड़े जो डर हैं उन्हें खत्म किया जाए।
2: बिल्कुल, कोई भी बीमारी या समस्या उसके नाम से ना डर सबसे पहले आ जाता है। तो ये जागरूक हो जाएं लोग और उसे डरे नहीं, उसका उपचार कैसे करना है और इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होती है। और 1994 में इस दिन की शुरुआत हो गई थी अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल, यानी कि

0: एडीआई नामक एक संस्था है, उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर पहली बार इस दिन को मनाया। 2012 से पूरे सितंबर महीने को ही वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के रूप में भी हम मनाते हैं।
1: हाँ, और अल्जाइमर या डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है अल्जाइमर जो है। WHO के अनुसार दुनिया में करीब 55 मिलियन से ज़्यादा लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और इसमें लगभग 60-70% मामले अल्जाइमर के ही हैं। और एक बात के तौर पर अगर हम बताएं तो हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले इसके सामने आते हैं। और इस समस्या को सामने आने पर दिमाग में बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जमा होने से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और इसका ही नतीजा होता है कि याददाश्त और सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
0: बिल्कुल, और ये महिलाओं के साथ में मैंने भी जो हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर की ही महिलाएं हैं, कईयों से सुना है कि धीरे धीरे ना चीज़ें वो भूलने लगती हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगर हल्के में ले लेंगी तो वो समस्या बड़ा रूप ना ले। इसीलिए इसके बारे में चेत जाना पहले से ज़रूरी होता है। और जब हम ये दिन मनाते हैं जागरूकता के लिए तो हर साल कोई ना कोई एक थीम भी होती है, और इस साल जो थीम रखी गई है वो है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डिमेंशिया डायग्नोस मैटर्स। इसका मतलब है कि जितना जल्दी आपको पता लगेगा उतना जल्दी आप कर पाएंगे। और ये थीम नेहा इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इस साल इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि समस्या का निदान जल्दी होने पर इसका इलाज, देखभाल और सहयोग सही समय पर जो भी पीड़ित है उनको मिल सके।
1: और वाकई अगर किसी शुरुआती लक्षण में ही जब हम पहचान लेते हैं तो जल्दी आसानी से हम उसका इलाज भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो नज़रअंदाज न करें, जैसे कि हाल में ही बातें बार बार आप भूलने की आपको ऐसी आदत नज़र आ रही, रोज़ के काम करने में भी अगर दिक्कत आने लगे, समय और जगह को लेकर अगर भ्रम होने लगे, या बोलने में सही शब्द आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहते हैं, या आपका मूड और व्यवहार अचानक बदल रहा है, तो इस तरह की जो लक्षण है, मतलब आमतौर पर हम छोटी मोटी चीज़ें भूलते हैं जो कि आम है, लेकिन कुछ ऐसा भूल जाना कि आपने कभी तुरंत ही वो किया है, किस जगह हैं आप, अगर ऐसा आप हो रहा है तो फिर आपको इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: और कई बार किसी चिर परिचित को हम जानते हैं लेकिन उसका चेहरा याद है, हम उसे पुकारना चाहते हैं लेकिन उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा होता है। हमें कोई चीज़ किसी से मंगवानी है कि भाई वो चीज़ हमें लाकर दे दो, लेकिन उस चीज़ का हमें नाम याद नहीं आता है। आपको अगर पेन मंगाना है, कोई किताब मंगानी है, तो आपके सामने उसकी छवि पूरी है लेकिन आप सामने वाले को बयान नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका नाम आपके जहन में नहीं होता। तो यही इस तरह के लक्षण होते हैं। और भारत में हम देखें तो लगभग 53 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, और पहले गांवों में इसे बुढ़ापे की समस्या समझकर लोग नज़रअंदाज करते थे, समय है, उम्र बढ़ रहा है तो ये चीज़ें होना लाजमी है, लेकिन इस बारे में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और वैसे तो कहना चाहिए कि पूरा कोई पक्का इलाज है नहीं इस समस्या का, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो इसके जोखिम को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
1: हाँ, जैसे कि हम रोज़ाना अगर व्यायाम करते हैं या योग करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, धूम्रपान और मदिरापान से दूर होते हैं, सामाजिक मेल जोल ज्यादा बढ़ाते हैं, दिमागी कसरत की चीजें होती है जैसे किताबें पढ़ना या वर्ग पहेलियां जो आती हैं, अलग अलग तरह की पहेलियां हल करना, तो ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है तो इन्हें कंट्रोल में रखने की भी हम अगर कोशिश करते हैं तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। साथ ही अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और अपने तनाव को कम करते हैं तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि ये जो दिन हम मना रहे हैं इसका संदेश भी यही है कि भूलने को उम्र का कोई सामान्य हिस्सा नहीं समझे कि भाई उम्र बढ़ रही है तो ये समस्या आनी ही है, ऐसा नहीं है। इसकी जल्दी अगर पहचान कर लेते हैं, सही जानकारी हो इसकी, तो परिवार का प्यार अगर हमें मिलता है तो वही इसकी सबसे बड़ी दवा है।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी ने लिखा है कि विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल ADI की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और आगे उन्होंने बताया कि नामकरण इस मानसिक बीमारी का नाम जर्मन मनोचिकित्सक और न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1901 में पहली बार एक महिला में इस विकार की खोज की थी।
0: इसी तरह से एक और संदेश हमारे पास आया है। इस संदेश में लिखा गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय अच्छा, ये तो शांति दिवस के बारे में, तो जब शांति की बात करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल, अभी तो हमने अल्जाइमर के बारे में बात की, और भूलने की जो समस्या है अक्सर तब भी आने लगती है जब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
0: तो देखो ना, मैं भी भूल गई कि हम बात कर रहे थे अल्जाइमर डे के बारे में और शांति दिवस का संदेश में पहले पढ़ने लगी, तो ये भूल ना हो पहले गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो भाई बहुत शांति है ना भी स्टूडियो में समय।
1: हाँ, और ये गाना अगर ऐसे गाने सुने तो मन में कितनी शांति लगती भी है, और एक अच्छा मौका भी है शांति का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है आज, और 21 सितंबर को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित ये दिन है, जिसका एक ही संदेश है कि युद्ध को नहीं शांति को चुनो।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि शांति एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत है, और ये हमारी पहुंच में है अगर हम इसे चुनते हैं तब।
0: बिल्कुल, यानी कि अगर हम क्रोध नफरत को चुनना चाहें तो उसे भी चुन सकते हैं, लेकिन अगर एक बेटर और बेहतर ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, एक अच्छा विकल्प हम चुनते हैं, तो वो शांति ही हो सकता है। और 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की। 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से 21 सितंबर को वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा के दिन के रूप में इसे घोषित किया। इस दिन सभी देशों और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि 24 घंटों के लिए ही सही, लेकिन इस चीज़ को, यानी कि जो हिंसा है उसे रोकने की कोशिश वो ज़रूर करें।

0: ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, और इसीलिए विश्व शांति का महत्व, इसको अगर हम समझेंगे तो सबका सहयोग और सबका योगदान होना बहुत ही ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सब मिलकर ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम अगर सब मिलकर करते हैं तो ही सफलता हासिल हो सकती है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास और शांति एक दूसरे से जुड़े हैं। दुनिया के 10 सबसे कम विकसित देशों में से ज़्यादातर किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं। तो जहाँ शांति होती है वहाँ परिवार जुड़ते हैं, समुदाय फिर से बनते हैं और बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, खेल पाते हैं।
0: और जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे खेलेंगे तभी तो उस देश का भविष्य जो है वो उज्ज्वल बनेगा
1: जी।
0: और इस दिन जो है, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं विश्व शांति दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस की, तो इस दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहाँ पर पीस बेल यानी कि शांति का घंटा वो बजाया जाता है। और ये घंटा दुनिया भर के लोगों द्वारा जो दान किए गए सिक्के हैं या पदक हैं उनसे बनाया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में शांति दिवस पर शांति मार्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतरधार्मिक संवाद आयोजित किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो इस तरह से जो सफ़ेद कबूतर होता है शांति का प्रतीक माना जाता है उन्हें भी उड़ाते हैं।
1: और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शांति हम सबका काम है, नफरत से भरे शब्द ना बोलें, अपने आसपास सम्मान की भाषा बोलें, सबको समान भाव से देखें, फर्जी खबरें जो होती हैं उन्हें फैलाने से रोकें। और शांति का मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है चंचल जी, क्योंकि छोटे छोटे रोज के अगर हम कदम उठाते हैं तो उससे ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे दूसरे को सुन लें, दूसरे को समझें, और कोई हिंसा अगर करता भी तो उसका जवाब हिंसा से ना दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, समझाएं किसी तरह से, अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
0: तो आपने कहा दूसरों को सुने समझें, तो भाई हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लेते हैं। उनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है और लगता है इसीलिए मेरा ऑफिस जाने से पहले तक सखी सहेली यानी मेरी धर्म पत्नी शांति बनाए रखी हैं और मेरी क्लास लेते हुए लेक्चर उन्होंने नहीं दिया है। काश हर रोज अलग अलग शांति दिवस हो।
1: हमें तो लगता है कि इन्होंने भी हमारी सखी को तंग करने का कुछ आज प्रयास नहीं किया होगा
0: जी,
1: इसी वजह से ये शांति बनी हुई है। क्योंकि जब कहते हैं कि एक कार्य क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तो वो प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि क्रिया शायद नहीं हुई है आज
0: जी।
1: तो ऐसा वो भी बनाए रखें शांति, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम के रोचक विषयों को पढ़ा तो पता चला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, मगर हमारे घर में आज सुबह से ही बर्तन बजने शुरू हो गए। देखिए प्रतिक्रिया हो रही है क्रिया की, और वो कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी और मेरी सुबह सुबह ही दूध लेने जाने की बहस शुरू हो गई। मैं मस्त था, सुरीला सफर कार्यक्रम के संभावित शब्दों से गीत सोचने में बड़ा व्यस्त था, घर में दूध ना होने के कारण चाय नाश्ते में देरी हो रही थी। शांति दिवस के मौके पर हम दोनों पति पत्नी ने घर में वो अशांति फैलाई कि बच्चे भी देख देख कर हंस रहे थे। बच्चों को हंसता देख मैंने पत्नी के सामने सरेंडर किया, डोलची उठाई और चुपचाप से दूध लेने चला गया। दूध आने के बाद फिर सबने हंसी खुशी चाय नाश्ता किया और अशांत हुआ घर का वातावरण एक बार फिर से शांति वाले माहौल में तब्दील हो गया। तो आप सबको हमारी ओर से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुभकामनाएं और ढेरों बधाई।
0: हम भी सबको शुभकामनाएं देते हैं और ऐसा हंसी खुशी का वातावरण सभी के घर में बना रहे। सुनते हैं ये गीत।

0: चंचल जी, मैं भी ये सोच रही थी कमेंट पढ़ते हुए कि हमारे साथी ने कहा कि वो दूध की वजह से जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने देखिए हमारा नाम भी साथ में लिया। उन्होंने कहा कि विविध भारती की जो सुरीला सफर की जो पोस्ट आई थी उसकी वजह से वो गाने सोच रहे थे और नहीं जा रहे थे ना, तो हम तो ये कह रहे कि रास्ते में भी सोचते सोचते जा सकते थे।
1: बिल्कुल सही बात है, आप जब जा रहे हैं दूध लेने तो रास्ते भर उन शब्दों को अपने जहन में रखते हुए जाइए और जब आ जाएंगे तो इत्मीनान से वो सारे गाने लिखकर आप पोस्ट पर डाल सकते हैं।
0: हाँ।
1: चलिए फिलहाल हम बात करते हैं ल्योदुर चमन की, जो कि एक कश्मीरी व्यंजन है।
0: हाँ।
1: और ल्योदुर चमन का मतलब होता है ल्योदुर मतलब होता है पीला और चमन का मतलब होता है पनीर। और इस रेसिपी की खास बात यही होती है कि इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनकी बहुत ही साफ सुथरी, कहते हैं ना कि मीठी सी रेसिपी होगी जिसमें तीखापन ज़्यादा नहीं होता।
0: कुछ भी नहीं डालते मसाले, कुछ नहीं डाल रही, क्या बात है भाई।
1: इसमें जो ग्रेवी है वो दूध, सौंफ, सौंठ इस तरह के मसालों से बनाई जाती है। तो सामग्री इसके लिए चाहिए 300 से 400 ग्राम मोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ पनीर, और 1.5 से 2 कप फुल फैट वाला दूध, यानी कि जिसमें मलाई होती है वैसा वाला दूध। सरसों का तेल चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच, वो चाहिए हमें पनीर तलने के लिए और ग्रेवी के लिए। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंफ पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंठ पाउडर 1 छोटा चम्मच, हींग चाहिए 1/4 छोटा सा चम्मच, स्याह जीरा चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, खड़े मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और नमक स्वाद के अनुसार।
0: हाँ।
1: अब पनीर को पानी में उबालने और भिगोने के लिए पानी चाहिए, पनीर को उबालने के लिए और भिगोने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी चाहिए, यानी कि 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने के लिए पनीर को तैयार करना है। एक बड़े बर्तन में पानी को उबालें, उसमें 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें। पनीर के टुकड़ों को इसमें डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से निकालकर सुखा लेना है। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल तब तक गर्म करना जब तक उसमें से अच्छा सा धुआं ना निकलने लगे। आँच को धीमा करके पनीर के टुकड़ों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक तल लेना है। तले हुए पनीर के टुकड़ों को कढ़ाई से निकालकर तुरंत एक बर्तन में जिसमें गुनगुना नमक वाला पानी हो उसमें डाल देना है। ऐसा करने से पनीर रबड़ की तरह खिंचा हुआ नहीं होता बल्कि नरम और स्पंजी रहता है।
0: okay.
1: और ग्रेवी का तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई में बचे जो तेल बच गया है उसी को थोड़ा सा गर्म करना है, और इसमें अगर कम लगे तो आप तेल और छोड़ दीजिए, और इसमें जीरा, हींग, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची ये सारे मसाले एक साथ डाल देने। कुछ सेकंड भी ये मसाले चटकने लगेंगे और इसमें इनकी खुशबू आने लगेगी, तब आँच को धीमा करना है, गैस बंद कर देनी है। इसमें हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर डालना है। सूखे मसाले ना जलें इसके लिए तुरंत इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देना है
0: जी।
1: दूध को अब इसमें थोड़ा सा मसाले डालने के बाद में दूध डालना है, और जब दूध डालेंगे तो कलछी से लगातार चलाते रहना ताकि दूध वो फट ना जाए। और जब दूध में अच्छा सा उबाल आने लगे तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। जो भीगा हुआ पनीर था उसको हाथों से निचोड़ कर इस उबलती हुई ग्रेवी में डाल देना है, और कढ़ाई को ढक देना है, धीमी आँच पर 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देना है। पनीर जब सभी ग्रेवी के साथ में सारे स्वाद को सोख लेगा और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, घी या तेल जो भी है वो सतह पर तैलने लगेगा, तो ऊपर से 1 चम्मच हल्का सा है तो घी डाल देना है या मलाई डाल सकते हैं आप, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर फिर गैस बंद कर दीजिए और गर्मा गर्म ल्योदुर चमन जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से
0: फिर भीनी भीनी से खुशबू रहेगी इसमें ऐसा लगता है ना। और एक हाक साग के बारे में भी आपने बताया था, तो हाक साग को अगर हम बताएं तो कश्मीर का सबसे पसंदीदा और रोजमर्रा के

0: खाने में बनने वाला पारंपरिक व्यंजन है। तो कश्मीरी कोलार्ड ग्रीन्स या हरी पत्तियों का एक साग होता है जो वहाँ मिलता है, और इसके बहुत ही कम मसालों के साथ इसे भी पकाया जाता है ताकि साग का जो स्वाद है वो बना रहे। इसके लिए हाक की पत्तियाँ, सरसों का तेल, हींग, सूखी लाल मिर्च और नमक, बस इतना ही चाहिए। और इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल जैसे कि आपने कहा इसमें भी नहीं होता है। ये इसका स्वाद हल्का तीखा और बेहद ताज़ा होता है, तो आमतौर पे इसमें उबले हुए चावल के साथ इसे परोसते हैं और ऐसे खाया जाता है इसे। लेकिन इसको मतलब बस सब्जियों को इसी तरह से बनाया जाता है, सब्जी को आप हल्का सा तोड़ कर या काट कर आप इस तरह से छोंक दीजिए, छोटे जो थोड़ी सी जो हमने सामग्री ली है उसमें आप इसको छोंक दीजिए और बस वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और बस ऐसे कह सकते हैं कि पहले वो जो पनीर की सब्जी है जिसका नाम मैं तो भूल चुकी हूँ,
1: ल्योदूर चमन
0: ल्योदूर चमन और हाक साग बड़ी आसानी से बन जाता है। ये भी जैसे हम भाजी बनाते हैं ना, जो ताज़ी सब्जियाँ जिस तरह से थोड़े से मसालों के साथ में ऐसा डाल के उसी तरह से इसे पका लिया जाता है। और बस इन सब के साथ में चावल बनाइए और खाइए, आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, आप रोटी के साथ भी खा सकती हैं और गर्मा गर्मी सब्जियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। और क्या होता है ना कि कई बार बहुत तेल मसाले वाला या लहसुन प्याज का कुछ खाने का मन ना हो तो इस तरह की हल्की फुल्की सब्जियाँ सभी बनाकर खा सकते हैं। और भाई खुशबू तो फैल रही है जायके की, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो संगीत की मीठी मीठी सुगंध है, खुशबू है, वो भी फैल जाए।
0: बिल्कुल।

चंचल जी, हमारे एक साथी ने लिखा कि उन्हें मेरे पति को भूलने की बीमारी की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, बढ़ती उम्र में होता है, कुछ एक्सरसाइज और रोज़मर्रा के काम नियम करने से बताया है। मैं भी कुछ चीज़ें रखकर भूल जाती

0: सकती हूँ, किसी समय याद आ जाता है, किसी का नाम या जगह के नाम भी वो भूलती हैं, ऐसा कह रही हैं।
1: तो बस आप ख्याल पर उपचार करिए, ध्यान रखिए अपना। और अभी कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है, तो हम लेते हैं इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
0: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा में आज सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र को। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू विविध भारती मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, मेरी आवाज इतने लोगों तक नॉट ओनली इन मुंबई बल्कि पूरे भारत में पहुंचेगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कम उम्र में आपने हमें इसका मौका दिया, उसके लिए थैंक यू।
1: तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है?
2: उम्मीद नहीं किया था कि 40 के पहले मैं यहाँ जाके लोगों से अपना जो भी नॉलेज या जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है, मतलब किसी भी बीमारी को कैसे रोका जाए, उस बारे में बात करूँ, ये सोचा था। बट सोचा था 60-70 की उम्र में इसके बारे में लोगों से बात करूँगा।
1: अच्छा,
2: तो इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, सबसे पहले उसके लिए विविध भारती को धन्यवाद देना चाहूँगा।
1: धन्यवाद आपको कि आप आए और आपने कहा कि बहुत उम्र के बाद आपको मौका मिलता, लेकिन दरअसल ये दौर बदल रहा है, तकनीक का जमाना है और मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और बीमारियों ने भी खूब प्रगति की है। बीमारियां नए नए रूप में नए नए नाम के साथ हाजिर हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि मरीज क्या करें, कैसे करें, कब करें। अभी डॉक्टर अजीत, इन दिनों एक बड़ी बीमारी है लेकिन कॉमन हो गई है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। जिसको सुनो तो पता चला कि हम फलाना हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक। तो ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और क्यों बढ़ रहा है?
2: तो दो चीजें, एक तो बीमारी है क्या और दूसरा जो हम सुन रहे हैं कि इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्चुअली सही भी है। ब्रेन स्ट्रोक, अगर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँ ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, दो प्रकार के स्ट्रोक हैं। एक होता है जिसमें उम्र के हिसाब से जितना ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए तो अगर वो ब्लड नहीं पहुँच पाए तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, ये एक्चुअल स्ट्रोक है। दूसरा एक होता है जिसमें इतना ज़्यादा ब्लड जा

0: है, ब्रेन में खून की नस फट गई है।
1: ओहो
0: तो ऐसे ले मैन मतलब आम आदमी उसको भी स्ट्रोक बोलते हैं, बट मेडिकल भाषा में उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रेन हेमरेज। तो उसका मुख्य कारण है बीपी बढ़ जाना, बहुत स्ट्रेस है, पहले से बीपी की दवाई चल रही थी, पेशेंट ने खाना बंद कर दिया, कुछ झगड़ा हुआ, टेंशन आया, बीपी बढ़ने के कारण जो नस फटी तो उसके कारण जो खून है वो अंदर ब्रेन के अंदर फट गया पूरा, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। जैसा आपने सेकेंड सवाल पूछा, क्या इसका एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, आंसर इज येस। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, मैं जब बचपन में जब डॉक्टर नहीं था तो हमारे हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ मतलब पेशेंट का उम्र 60-70 वाले एज में रहेगा, बट अभी ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि 30-35-40 साल की उम्र है और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट एडमिट होते जा रहे हैं
1: जी।
0: तो उसका कारण हम आगे आप देखेंगे, बट एक कितने लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होते जा रहे हैं इंडिया में, ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख पॉपुलेशन देखे किसी शहर का तो उसमें 150 से 200 लोगों को स्ट्रोक आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 में से एक मरीज में हमको ब्रेन स्ट्रोक दिख रहे हैं
1: जी।
0: पहले जो नंबर्स हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट 1 लाख में नहीं तो 10-15, तो ऑलमोस्ट वी कैन से 10 गुना जो बीमारी है वो बढ़ते जा रही है। तो सिर्फ बीमारी नहीं बढ़ रही है, एक्चुअली बड़े शहरों में इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे अस्पताल ज़्यादा हो रहे हैं, सिटी स्कैन एमआरआई की सुविधा है, न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत बार बीमारी के नंबर्स उतने ही हैं बट वो डायग्नोसिस ज़्यादा होते पा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसीलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रोक है। पहले काफ़ी बार स्ट्रोक हुआ, पेशेंट घर से अस्पताल पहुँच ही नहीं पाया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया, बट एक्चुअल तो वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ करता था।
1: तो ये तो बड़ी अलग तरह की जानकारी आपने दी कि लोग डायग्नोस नहीं करते थे, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि लोग अवेयर हो गए।
0: करेक्ट, अच्छी है, बट उसका एक्चुअल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। मतलब हम स्कैन कर रहे किसी और चीज के लिए और उसमें दिख गया है तो स्ट्रोक भी है इनको, फिर बाद में पूछा जाता है आपको कैसे हुआ, तो बोले हाँ हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन काफी कॉमन है, बीपी का प्रॉब्लम हुआ था बट दवाई लेना बंद कर दिए, दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम हो रहा है, जंक फूड बोलो खाते जा रहे हैं और चलना या एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक तरह से मेजर कारण है और जिसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप उम्र बढ़ने से स्ट्रोक होता है ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट उसको आप रोक नहीं सकते हो, बट उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जैसे कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे सॉल्ट और बीपी कंट्रोल करना, इस चीज को आप एज अ पर्सन उसको रोका जा सकता है।
1: तो कारण भी एक तरह से आपने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध, गुस्सा, कई बार हम लोगों को देखते हैं कि आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं, तो ये सब भी कारण हो सकता है क्या?
0: एक ही कारण नहीं है, बट उससे एक है कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं रक्त दाब, वो कन्फर्म है बढ़ता ही है उस वक्त, तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी, और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का
1: जी,
0: प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई। तो अगर आप देखिए कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं
1: जी, जी।
0: और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है
1: जी।
0: बट जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ब्रेन हेमरेज, जिसमें काफी पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते।
1: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
0: तो ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ ना कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है, जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है वो शरीर के बाएं तरफ होगा, जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है, अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी, पेशेंट चल रहा है तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहे हैं। अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफी ज्यादा फंक्शन होते हैं, तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज्यादा होती है, तो उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहा है, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जब स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है, अच्छा मतलब रिकवरी का जो समय है वो काफी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है, बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफी ज्यादा ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। तो कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफी ज्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। लेफ्ट इज बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल खराब बीमारी, बट राइट इज कंपैरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं।
1: हुँ।

0: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश प्रयास किया जा सकता है?
1: यूजुअली ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है, जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन, एमआरआई, ऑलमोस्ट बम्बई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है। दिक्कत वही है, पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो, वो क्या सोचेंगे मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर दिया, मुझे पैर में मोच आ गई, उसके कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक ही है कि थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए। खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे एमडी फिजिशियन भी है वो भी काफी बार डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हमने एमआरआई किया उसमें दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे वो स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस हैं। दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरिफेरी में है, वहां से न्यूरो के सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते हैं। तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो, तो सिर्फ खून पतला करने की दवाइयां और फिजियोथेरेपी, बट इससे काफी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर अजीत हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज होते हैं, बहुत, तो इसका क्या संबंध?
1: खून अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है, तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है। तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयां, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छा है, काफी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है।
0: जी जी, तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है, मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए?
1: ये एक मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पाल्पिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखी है जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन और उसको तुरंत खा लो, तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज है, बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना। क्यों, क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है, और दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है। तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, तो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली और वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फोन पे एक बार बात कर लूं। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है।
0: बिल्कुल, और एक जमाना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है ना?
1: उसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो हम बोलते हैं जैसे आपने बताया कि फोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूंगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहां पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन एंजियोग्राफी की सुविधा हो, वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले पता होना चाहिए। बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए, उससे भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है जी। वो एक साथ सब साफ हो जाता है।
0: जी जी,
1: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं अपेंडिक्स बोलिए, हर्निया, ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई, और हम एक जरूरी बात आपको याद दिला दे रहे हैं।

0: कि यहां पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना हम सुनवाएं।
1: पसंद का, अपने विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव, साथिया तूने क्या किया बाय आई थिंक SP बालसुब्रमण्यम।
0: जी, SP बालसुब्रमण्यम की आवाज है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना ज़रूरी होता है?
1: तो दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है, वो पहले 5-7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको 1-2 महीना स्पीच फिजियोथेरेपी। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज़्यादा, क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफ़ी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को 1-2 महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाते हैं। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज़्यादा मैं बोलूँगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए परिवार की?
1: सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहे।

0: परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, दो दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा, तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तीन दिन से अस्पताल में रखे फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफ़ी पेशेंट मान जाते हैं फैमिलीज, काफ़ी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है, अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज़ दो अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन, दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही सही था। बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीमारी का जो आउटकम है वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है
1: जी।
0: ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको समझाना काफी मुश्किल बोल सकता हूँ
1: जी, जी। और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए,
0: तो वो जो ये जो है कि मेरे गांव में तो ऐसा हुआ था, हमने उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए। तो जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, बट जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे, मतलब अदर देन एलोपैथी, कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के तीन चार जो भी दवाइयां हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फायदा हो जाए वो।
1: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है। अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
0: काफी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया, डॉक्टर मुझे जबरदस्ती दवाइयाँ खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन क्लोपिडाइब, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ खेल रहा हूँ भाग रहा हूँ, जबरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमजोर होते जा रही है, अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं। तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है, इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स, 2-5 साल, और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयां शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू। 2000 एकदम सेफ दवाइयां रहती है, मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग किडनी लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए, अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो।
1: बिल्कुल, और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। और हमें यहाँ पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: अब मैं सुनना चाहूंगा एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूँ
1: जी, सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना
0: जी, हाँ
1: सुनते हैं ये।

0: डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले। एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों को दाईं तरफ, कुछ को पूरे सिर में। तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं। आई थिंक अभी भी जो भी न्यूरो, नॉट ओनली मुंबई, आई थिंक जहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है। पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।
0: जी जी।
1: तो उसका हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है
0: तो
1: नेट पे उसका एक इलाज भी अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो?
0: बिल्कुल।
1: तो सारे हेडेक जो है उसके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी सिटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहे हैं। काफ़ी बार हम पेशेंट देखते हैं, कुछ बेसिक दवाइयाँ लिख दिया उसको, जो आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं। पेशेंट को 10 दिन दवाई दे, दर्द एकदम गायब हो गया, और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ, वर्ड्स निकल नहीं पा रहे, चेहरा टेढ़ा हो रहा है। हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी भी ऐसा है, 90-95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं। और दवाइयाँ ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े। कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फ़ोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए, और कुछ दवाइयाँ जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं, उसी से आराम हो जाता है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज़ ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज ये है कि उसका जो दवाइयों का कोर्स है वो काफी लंबा चलता है।
0: जी जी।
1: तो काफी लोगों को कॉफी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है। बट काफी दर्द ऐसे भी हैं जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है। तो आप इसको ठीक करो, सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
0: जी। सिर दर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है, और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह से?
1: एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया चश्मा, नाक, किसी को दांत में इन्फेक्शन हो, जिसको हम बोलते हैं रूट कनाल करवाना है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
0: इसकी वजह से
1: तो
0: सिर दर्द।
1: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल वो जाना है ब्रेन पे ही। काफी बार लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द

0: लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, दिक्कत
1: हाँ
0: है पेट की, पेट में
1: हाँ
0: जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है
1: जी जी
0: उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन, MRI, CT स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी
0: हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों से ही आराम हो जाता है।
1: जी
0: तो पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को ऐसे ही था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक MRI करा लूँ। तो हमारे लिए MRI करवाना एकदम आसान चीज़ है, मैं लिख दूँ 10 मिनट में उसका MRI कहीं जाके हो भी जाए।
1: जी
0: तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम चाहते हैं कि बिना MRI के आप कैसे उस बीमारी को डायग्नोस कर सको।
1: जी जी
0: तो वो न्यूरो का काम है कि आप कंसल्ट करो, ना कि खुद से MRI कराओ। उसमें कुछ लिखा रहेगा कि साइनसाइटिस है, फिर पेशेंट उसको गूगल पे सर्च करेगा कि इससे मुझे आगे जाके ब्रेन में
1: जी
0: इन्फेक्शन हो सकता है।
1: भाप ले लो
0: तो वो थोड़ा
1: और
0: हमारे लिए मुश्किल काम होता है कि जो पेशेंट गूगल से पढ़ लिख के आते हैं,
1: जी
0: दैट इज अ
1: जी
0: हाफ इंफॉर्मेशन,
1: जी और गूगल आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर बन
0: हाफ डॉक्टर बोल सकता हूँ
1: गया है
0: मैं।
1: जी, और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं फायदे कम, तो
0: करेक्ट
1: इसलिए
0: करेक्ट
1: सिरदर्द भी अगर हो रहा है तो इग्नोर करने की बजाय
0: करेक्ट
1: डॉक्टर
0: करेक्ट
1: से
0: करेक्ट
1: संपर्क
0: करेक्ट
1: कर
0: तो
1: लें
0: वो जो
1: और
0: 5% के पेशेंट है जिसको एक्चुअली ब्रेन में दिक्कत है, हमारा टारगेट रहता है हम उसको कैसे कैच कर सके। जैसे
1: जी
0: ब्रेन हेमरेज है तो सिर दर्द हो रहा है, वो खुद से डिस्प्रिन की गोली घर पे खा ले तो ब्रेन हेमरेज बढ़ना ही है। तो हम बोलते हैं आइए, हम देखेंगे जांच
1: ओ
0: कौन सी करनी है, CT स्कैन करना है, MRI करना है, एंजियोग्राम करना है, बहुत सारी जांच है। तो उसके लिए कौन सा नेसेसरी टेस्ट है वो आई थिंक बिना देखे बोलना मुश्किल है, उसके लिए
1: जी
0: हमको मरीज को चेक करना ही पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। और स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या मरीज एकदम सामान्य जीवन जी पाता है या फिर उसको कहीं तकलीफ होती है कि एबसेंट माइंड होना, याददाश्त पर असर पड़ता है?
0: किस स्टेज पे आते हैं, काफ़ी बार ब्रेन स्ट्रोक इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हमको सूजन कम करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है।
1: अच्छा
0: तो इसका ऐसे कोई ग्रॉस परसेंटेज बोलना काफ़ी मुश्किल है कि कितने स्ट्रोक में पेशेंट कितना रिकवर होगा। एक अगर आप पूछे कि स्ट्रोक होने से डेथ का चांस कितना रहता है, एक जो ओवरऑल ICMR जो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 से 20% डेथ होते हैं अभी भी भारतवर्ष में। तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो 16 से 20% है इसको हम अभी भी रोका जा सकता है, प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम समय पर अस्पताल आ जाए। कुछ ना कुछ जो बोलते हैं परमानेंट पैरालिसिस बोलो, या भले ही पैरालिसिस ना हो पर उनके जो चलने का पैटर्न है, डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो उसका एक परसेंटेज रहता है कि हाथ कितना काम नहीं कर रहा है, चेहरा कितना टेढ़ा हुआ है, जैसे सिर के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि सिर पे मार दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एकदम गलत नहीं है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो अब
1: अच्छा
0: उसका मेन काम रहता है आंखों की रोशनी प्रोवाइड करना। तो अगर किसी को उस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो काफी बार एक आंख की रोशनी चली जाती है।
1: जी, तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई लक्षण आपको लगता है, दिखाई देता है, तो डॉक्टर से संपर्क कर लें।
0: करेक्ट।
1: और हमें इस समय बताइए कि कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाए हम श्रोताओं को।
0: लापता लेडीज का एक फेमस सॉन्ग है अरिजीत का, वो सुनना पसंद करूंगा मैं, सजनी रे,
1: जी
0: बहुत ही
1: सुनते
0: फेमस
1: हैं,
0: सॉन्ग है वो।
1: जी सुनते हैं ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज में
0: जी
1: है ये गाना।
0: करेक्ट।

0: गाने से पहले हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारियां चाहेंगे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है क्या?
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही अच्छी चीज़ है कि ओवरऑल जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफ़ी कम है। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है, ब्रेन ट्यूमर इज हार्डली 5-7%। तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है। बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे ट्यूमर के कारण खराब होते जा रहे हैं। बट जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज नो। ऑलमोस्ट 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके, रेडिएशन जिससे भी, क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है। तो जो भी एक निगेटिव माइंड सेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी तो मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत यही है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए या देखने में प्रॉब्लम है, MRI किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4। ये मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज़ है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे तो वो नंबर 40-50 हज़ार के आसपास है।
0: जी जी।
1: फिर MRI आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि MRI के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और अचानक?
1: जैसे ब्रेन स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, नॉन
0: स्पेसिफिक मतलब वाली बीमारी।
1: करेक्ट। तो काफी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयां खा के चल रहा है ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे वो दर्द का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है, तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि MRI कराइए। दूसरा वॉमिटिंग होती है इसमें, तब पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीजें, सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तब ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोले जाके MRI कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में है, मुंबई में है, तो यहाँ तो MRI इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी Tier 3 सिटी में जाइए, पेरिफेरी में, वहाँ MRI छोड़े आपको न्यूरो के पास पहुँचना ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो हर एक का MRI करना मुश्किल होता है।
0: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जिससे?
1: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप देके रखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए दो ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेज नॉन कैंसर। तो ऑलमोस्ट 70

0: परसेंट नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
1: जी, तो यहाँ पर एक गाना सुन लें डॉक्टर साहब।
0: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह ही दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है, तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही जरूरी होता है ब्रेन ट्यूमर में?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो MRI देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत मेरे श्रोताओं को न पड़े तो अच्छा है। मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं, स्लो मतलब हर साल में 2 mm, 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं। तो अगर मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 cm के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह मशीन होगी, उसको हम बोलते हैं गामा।

0: बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
1: जी, तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी जो हम बोलते हैं 10-15 दिन आराम कीजिए, जो भी टाँके हैं सिर पे वो 2 हफ्ते बाद निकाल के। महीने भर में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मरीज जो रहते हैं उनका चलना फिरना खाना बाहर की लाइफ एक्टिविटी वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है अब तो ये दोबारा काम पर नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे ये वो नहीं करोगे। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने का कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पर काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये 2-3 चीज में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब, फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई, हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ अचानक चक्कर आया फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना
0: एक लक्षण है उसका। काफी बार हमने MRI किया, पेशेंट को फिट्स आया था, MRI करके देखे, MRI एकदम नॉर्मल है। तो MRI करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या वो देखने के लिए। बट नॉर्मल MRI है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है
1: जी।
0: तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है वो कहीं कुछ हिल गया है या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। तो उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का।
1: जी।
0: तो वहां अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफी कॉमन बीमारी है।
1: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है।
0: करें, करें,
1: तो उसके क्या लक्षण है?
0: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं।
1: ट्यूमर
0: तो बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है। जैसे बाकी शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए कुछ भी हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है। बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है।
1: जी, तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
0: MRI हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है।
1: और तो फिर
0: उसके हिसाब से इलाज डिसाइड होते हैं। सादा गांठ है, मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है या महिलाओं में ज्यादा पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ?
0: ऐसा जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15 से 20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन। बट ऐसा मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहते हैं, सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से एक यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है किसी को नहीं पता। जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर इसका एक काफी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लगा पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं, बट उसके नंबर्स इतने कम है फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी, तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है, किस तरह के
0: स्ट्रोक? यस, स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली, बहुत मीठा,

0: शुगर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, बट ट्यूमर में समहाउ कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
1: जी, और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
0: 100% यस। जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो वो सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं। जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच है, तो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते, तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज़ है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समहाउ वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है, जो आसानी से मरीज ले सकता है।
1: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
0: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी,
0: जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन हैं, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है। फिर भी स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप जाके अब न्यूरो को दिखाइए, बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी। तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े, तो उसी के लिए हम बोलते हैं आपके फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डायग्नोज राधर देन उसको मिस करना, क्योंकि एक बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जो आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
1: जी जी,
0: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीज है नशा बंद कर दो, बहुत फायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों में कुछ भी फायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफी खराब चीज है, जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियां जो है सिकुड़ती जाती है, तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज, और बहुत ज्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम करना।
1: जी, तो ये जो जंक फूड की बात कही है, तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेंजी जो सुन रहे हैं और नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद बात है।
0: करेक्ट, तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है ऑलमोस्ट सारे छोटे सिटी में भी, काफी सस्ते में मिल जाते हैं, बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया, और दिक्कत है कि उनका इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या ही होगा, बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
1: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिर दर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिर दर्द सुबह उठते से ही होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिर दर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है, तो इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए। जरा
0: हर पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है, तो बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था, हम भी वही दवाई खा ले क्या।
1: जी जी,
0: अब ऐसे बाकी फैमिली मेंबर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किस से हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हार्मोन्स, एंजाइम, सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग, तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं, जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया, नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो, जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं बोलूँगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय नाइट टाइम है, तो उसमें फिर अदर देन दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है
1: जी।
0: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं।

0: तो जो दवाइयाँ भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है।
1: जी
0: तो किसी हद तक यस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन।
1: जी
0: दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग
1: जी
0: मॉडिफाई करना है। बट एक है कि ये दवाइयाँ इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट रहता है।
1: जी एक और बात हमारे जहन में आई है, वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है, सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम करे, कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट अजीब सा होता है,
0: करेक्ट, तो उस
1: तो ये क्या कोई न्यूरो
0: न्यूरो
1: प्रॉब्लम?
0: रिलेटेड ही है, उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60+ एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगते हैं। तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो
1: जी
0: उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है मेडिकल टर्म, उसको को बोलते हैं फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज़ करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन एमआरआई नहीं, हम
1: जी
0: फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसे हिलना शुरू हो उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है उससे एज अ डॉक्टर हमको काफ़ी फायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर्स या पार्किंसंस तो नहीं है। तो अगर वो फैमिली मेंबर्स ने उसका वीडियो बना लिया और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे, तो हम उस चीज़ को डायग्नोज कर लेते हैं।
1: जी
0: बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
1: जी तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
0: चलो नमस्कार एवरीवन, थैंक यू।
1: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: 102.8 FM पर। यह विविध भारती का मुंबई केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार।
5: नमस्कार, मी नंदिनी मथुरे। ऐकूयात काही ठळक घडामोडी। भारत आणि न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार येत्या 20 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी आज नवी दिल्लीत वार्ताहर परिषदेत ही माहिती दिली। या करारामुळे वस्त्र प्रावरणं, चामड्याच्या वस्तू, अभियांत्रिकी वस्तू, औषधं, शेतमाल आणि प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ या भारतीय उत्पादनांना न्यूझीलंडमध्ये चांगला वाव मिळेल असं ते म्हणाले। येत्या 29 तारखेला आयोजित केल्या जाणाऱ्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विश्वविक्रमी रोजगार महाकुंभाला नामांकित कंपन्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। आतापर्यंत 1588 नियोक्त्यांनी नोंदणी केली असून त्यांच्या माध्यमातून 71,939 प्राथमिक रोजगार संधी उपलब्ध झाली आहेत। आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंची विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये यशस्वी वाटचाल सुरू आहे। कबड्डीमध्ये जपानबरोबरचा सामना 49-24 जिंकून भारताच्या पुरुष संघानं आज विजयी सलामी दिली। नेमबाजीत 10 मीटर एअर रायफल गटात हिमांशू धिल्लॉनं रौप्य तर रुद्रांश पाटीलनं कांस्य पदक पटकावलं। परकीय चलन बाजारात आज रुपयाचा भाव 24 पैशांनी वधारला। कच्च्या तेलाच्या दरवाढीला बसलेला लगाम आणि शेअर बाजारातला सकारात्मक कल यामुळे आज रुपयाचं विनिमय मूल्य प्रति डॉलर 95.72 रुपये इतकं राहिलं। मुंबई शेअर बाजारात आज सेन्सेक्समध्ये 564 अंकांची वाढ झाली आणि तो 74,859 अंकांवर बंद झाला। राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टीही 68 अंकांची वाढ नोंदवत 23,414 अंकांवर बंद झाला। याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया संध्याकाळी 7 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात। नमस्कार।
4: 102.8 FM पर यह विविध भारती का मुंबई केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत।
6: बचपन की ही तो थी पवित्र, निश्चल, बेफिक्र और असीम नींद। अब तो नींद में आहटे हैं, आशंकाएं हैं, सपने हैं, उनींदापन है, बेचैनी है और हैं तरह तरह की फिक्र। ऐसे में याद आती हैं माँ की थपकियां, पिता का दुलार, बचपन की लोरियां।

लोरियां, दुनिया की सबसे पवित्र रचनाएं, दुनिया की सबसे पवित्र कविताएं हैं हर भाषा की लोरियां। लोरियां बची रहें, बचा रहे बचपन, बची रहे ममता। आइए इस लोरी को सुने जो दो अलग अलग आवाजों में आप तक पहुंचेगी।

तुम्हारी आंखों से रोशन है हमारी शाम सुबह, हमारी दुनिया में रंग है तुम्हारी आंखों की वजह से। तुम हमारी दुनिया की चमक हो, तुम्हारी आंखों में बो रखे हैं हमने अपने कुछ सपने। देखो संभाल कर रखना हमारे सपनों की ये नाजुक दुनिया।

0: क्या है।
1: आज के छायागीत में थे ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: था क्या।
1: फिल्म चिराग, मजरूर सुल्तानपुरी, मदन मोहन। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम नया कार्यक्रम तराने नए पुराने बस थोड़ी ही देर।

डब्बू मलिक के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे थे फैज अनवर ने। फिल्म का नाम मैंने दिल तुझको दिया। और अब आपको सुनवा रहे हैं रिश्ता कागज का। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तराने नए पुराने में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गुरु फिल्म से। इस गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत तैयार किया है ए आर रहमान ने। आवाज़ें हैं ए आर रहमान और चिन्मयी की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब आपको सुनवा रहे हैं बेटा फिल्म का गीत, जिसे गाया है अनुराधा पोडवाल और विपिन सचदेवा ने, और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

0: विविध भारती,
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्य

0: कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
1: आज के फनकार
2: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
1: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
0: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
3: अभी आपको सुनवा रहे हैं साया फिल्म का गीत। इस गीत में आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। आनंद बख्शी के बोल और संगीत है MM क्रीम का।

0: अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10

0: मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए कार्यक्रम का शेष भाग सुनते हैं। आपको सुनवा रहे हैं मृत्युदंड फिल्म का गीत। इसे गाया है उदित नारायण ने और अलका याग्निक ने। जावेद अख्तर के बोल और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाज।

0: आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अनुराधा पौडवाल की आवाज में अनंत बख्शी का लिखा गीत और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये गीत हमने लिया है नगीना फिल्म।

बेमिसाल के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं जाबाज फिल्म का गाना, जिसे गाया है सपना मुखर्जी ने। गीत के बोल इंदिवर ने लिखे और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी।

आइए अब सुनते हैं त्रिदेव फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: इस गीत के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

झरोखा में आइए, अब आपको बताते हैं आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर होगा कार्यक्रम संगीत सरिता। आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं, इसका छठा भाग सुनवाएंगे। आमंत्रित कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की है। 7 बजे होगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे एक ही फिल्म से मैं यादों की बारात फिल्म के गाने। 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल, इसमें आपको सुनवाएंगे नाटिका प्रेम दीवाना, लेखन ब्रजभूषण का है और निर्देशन पुरुषोत्तम देवहारकर का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री करीना कपूर पर। 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। 6:05 कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार, 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 319 आप सुन सकते हैं। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं का 7वां भाग आप सुनेंगे। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की है। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 होगा कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर और दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का है। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक, 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित होगा दुर्गा खोटे पर। सुबह 10 बजे सुनिए सेहतनामा में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्रा से ममता सिंह की बातचीत। 11 बजे रंग तरंग जो है गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम। 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल, दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। पर सदाबहार नगमे, दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली। इसके विषय बता देते हैं एकल यात्रा का बढ़ता चलन, सखी विशेष हैं मल्लिका श्रीनिवासन, हल्की फुल्की बातें में आंटी मत कहो ना और मुहावरों की दुनिया में होगा मुहावरा घर का भेदी लंका ढाए। शाम 4 बजे आप सुनेंगे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता अनंत महादेवन से नीता बाजपेयी की बातचीत। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर होगा संध्या रंजन। शाम 7 बजे आप सुनेंगे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। 8 बजे हवा महल में प्रहसन इंटरनेशनल प्रॉब्लम बेजारी, इसका लेखन किया है अजय भारती ने और निर्देशक हैं मुख्तार अहमद। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार, ये केंद्रित है अभिनेता प्रेम चोपड़ा पर। 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, 10:30 पर ढलती

0: संगीत सरिता में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज आप सुनेंगे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला का छठा भाग।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। दो शिष्य अपने गुरुजी से बार बार पूछा करते थे कि हम कैसा गाते हैं। गुरुजी चुप्पी साध जाते थे। जब बार बार पूछने पर एक दिन उन्होंने कहा कि गाना सुनाओ। गाना सुनाने के बाद फिर वही सवाल पूछा कि गुरुजी हम कैसा गाते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा, अभी तो हमने तुमसे रियाज सुना है। तुमने सिर्फ रियाज गाया है, गाना तो बहुत दूर है। तो खास बात यह है कि गायन में स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। जितना गायन सहज होगा उतना आत्मचेतना लाएगा। मैं सोचता हूँ कि अच्छे गायन के लिए हर जोड़ बेजोड़ होना चाहिए। उसमें बढ़त, बहलावे, डांट, कंपित, आंदोल, लहक, लाग, डगर, जरब, ध्रुव, स्मृत, मुरन, सूत, मींड, बल, पेंच, डांट, धुरन, मूर्छित, गमक, सपाट, छूट, गमक की ताने, बोल ताने, फिरत, जरब से गमक, कूट तान, कड़क, मंद्र मध्य प्रधान होते हुए भी तीनों सप्तक में सधी हुई ताने आदि आदि होना बहुत आवश्यक है। स्वर के उपासक माया के बंधनों को तान तलवार से काट कर राग रंग से भवसागर को तर जाते हैं। तो आइए मेरी स्वर रचित बंदिश सुनिए राग मारवा में।

गायक में यह विशेषता होनी चाहिए कि वो बंदिश को अपने गले के धर्म के अनुरूप स्वरूप में ढाल दे। आमिर खान साहब ने राग बिलासखानी में तानसेन के ध्रुपद को कितना खूबसूरत ढाला है, तो वह बंदिश मैं आपको गाकर सुनाऊं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। इस श्रृंखला का छठा भाग अभी आपने संगीत सरिता में सुना। इसे प्रस्तुत किया था प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला पेश होगा बस कुछ ही देर में।

102.8 FM पर ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दूरियां फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। सुदर्शन फाकिर के बोलों को संगीत से सजाया है जयदेव ने और आवाजें हैं भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल की।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुनते हैं हनीमून फिल्म का गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसे गाया है अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडकर ने।

0: संगीतकार उत्तम सिंह एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
1: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता दौर बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
5: जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

अंतराल के बाद हम स्वागत करते हैं अपने सभी फौजी साथियों का उनके कार्यक्रम जयमाला में। आपको सुनवा रहे हैं सिलसिला है प्यार का, इस फिल्म का गीत। गीत में आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल लिखे समीर ने और संगीत जतिन ललित का है।

कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। जतिन ललित ने इस गीत की धुन बनाई है और गीत के बोल समीर के हैं।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ही फिल्म से, इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात फिल्म से लिए गए गीत। अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, साथ में आवाज़ें हैं पद्मिनी शिवांगी और साथियों की। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत है आरडी बर्मन का।

यादों की बारात फिल्म के गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आरडी बर्मन का था। और अब आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म का किशोर कुमार का गाया ये गीत।

लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगला गाना मैं उन दो नौजवान हसीन दिलों के लिए गा रहा हूं जो मेरी नजरों के सामने हैं। गाने के बोल हैं, बोल बोल आप अच्छी तरह जानते हैं।

102.8 FM पर ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक गीत। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं गहरा दाग फिल्म का एक गाना अर्ष भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्द शकील बदायूनी के लिखे हुए हैं और संगीत है रवि का।

रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गहरा दाग फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने। इस गीत के साथ ही आज का एक गीत कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। ...102.8 FM पर ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 8:05 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार।

चित्रलोक कार्यक्रम में हम अपने सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, रिवॉल्वर रानी फिल्म से। इस गीत को गाया है मोइन साबरी ने। इस गीत के बोल लिखे शाहीन इकबाल और पुनीत शर्मा ने, संगीत संजीव श्रीवास्तव का है।

0: सी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं हाईवे फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल ने बोल लिखे हैं और संगीत है ए आर रहमान का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती
0: है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: किक फिल्म में अभी आप सुनेंगे निधि मोहन की आवाज। इस गीत के बोल मयूर पुरी ने लिखे हैं और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। सुनते हैं अंतराल के बाद कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है हीरोपंती फिल्म से। इसे गाया अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। कौशल मुनीर के बोल और संगीत है साजिद वाजिद का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत अंकित तिवारी की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है एक विलेन, मनोज मुंतशिर की शब्द रचना है और संगीत है अंकित तिवारी का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-70

0: न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ

0: शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा, तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ, वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने

0: निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। SD बर्मन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मुनीम जी।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था मुनीम जी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीत एसडी बर्मन का था।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था रजिया सुल्तान। इसे लिखा था जानिसार अख्तर ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म जुवारी से लिया है। गाने वाले कलाकार मुबारक बेगम, कृष्णा बोस और सुमन कल्याणपुर हैं। गीतकार आनंद बख्शी हैं और धुन बनाई है कल्याण जी, आनंद जी ने।

मुबारक बेगम कृष्णा बोस और सुमन कल्याणपुर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जुआरी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है पूजा के फूल। गीत को आवाज लता मंगेशकर ने दी है, बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म पूजा के फूल का ये गीत सुना। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए और मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है शरीफ बदमाश।

फिल्म शरीफ बदमाश का गीत अभी आपने सुना, युगल स्वर आशा भोंसले और किशोर कुमार के थे। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है चाचा जिंदाबाद। गीत को आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाजें आशा भोंसले और सखियों की, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम।

0: इस रचना के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती।
2: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई।

0: और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
1: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
2: ऐसी अनमोल यादें

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी अभिनेत्री जो टिपिकल बॉलीवुड के रोल भी उतनी ही कुशलता से करती हैं जितनी कुशलता से वो गंभीर भूमिकाएं निभाती हैं।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें करीना कपूर की। करीना कपूर जाने माने अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता की बेटी हैं। उनके दादा राज कपूर शोमैन के नाम से विख्यात थे, यानी कपूर खानदान का रोशन चिराग हैं करीना। उनकी बहन करिश्मा कपूर पहले ही फिल्मों में आ चुकी थीं और करीना कपूर का फिल्मों में आगमन अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ सन 2000 में हुआ, जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी के जरिए।

जैसा कि मैंने आपसे कहा, करीना कपूर ने एक तरफ टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन वाली भूमिकाएं बहुत खूबी से निभाई हैं, दूसरी तरफ उनकी कुछ गंभीर फिल्में भी आई हैं, जैसे सुधीर मिश्रा की फिल्म चमेली, जिसके जरिए पहली बार वो एक गंभीर अभिनेत्री के तौर पर जानी गईं।

विशाल भारद्वाज की फिल्म ओंकारा में उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार बड़ी खूबी से निभाया था। साल 2007 में आई वो फिल्म कैसे भूल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। इस फिल्म के निर्देशक थे इम्तियाज अली। इस फिल्म में करीना कपूर के साथ नायक थे शाहिद कपूर और ये फिल्म थी जब वी मेट।

रिफ्यूजी के बाद करीना कपूर की फिल्म आई मुझे कुछ कहना है। इसके अलावा उनकी कुछ और महत्वपूर्ण फिल्में हैं अजनबी, यादें और कभी खुशी कभी

करीना कपूर ने अपने अभिनय के जरिए अपना लोहा मनवाया है और आज वो मुंबई फिल्म जगत की एक प्रतिभाशाली चोटी की अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।

करीना कपूर अपनी भूमिकाओं का चुनाव बहुत सोच समझ कर करती हैं। जाहिर है कि ऐसे में उनकी गिनी चुनी फिल्में आ रही हैं, लेकिन इन फिल्मों में वो अपने चाहने वालों को निराश नहीं कर रही हैं। जैसे धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म कुर्बान में उन्होंने बहुत सशक्त अभिनय किया।

0: साल 2009-2010 की बेहद चर्चित फिल्म रही है थ्री इडियट्स। विधु विनोद चोपड़ा का निर्माण और राजकुमार हीरानी का निर्देशन थ्री इडियट्स जहां आमिर खान के लिए जानी जाती है, वहीं करीना कपूर की एक मस्त भूमिका के लिए भी याद की जाती है।
1: Zubi dubi, zubi dubi, nache, kyun pagal stupid man.

करीना कपूर ने बड़ी मेहनत के साथ कपूर खानदान के अभिनय की परंपरा को आगे बढ़ाया है। वो फिल्म संसार की सिर्फ सजीली हीरोइन नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए बिल्कुल जाना जाता है। एक मैं और एक तू, जिसमें वो इमरान खान के साथ नजर आईं, शाहरुख खान की फिल्म रावण, निर्देशक अनुभव सिंह।

फिल्म सत्याग्रह, इसे प्रकाश झा ने निर्देशित किया है। साल 2014 में करीना कपूर की फिल्म आई सिंघम रिटर्न्स, इसके निर्देशक थे रोहित शेट्टी।

सैफ अली खान से ब्याह रचाने के बाद करीना कपूर अब जरा चुनिंदा फिल्में ही करती हैं। उनकी धूम धड़ाका मचाने वाली फिल्म रही है सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान।

2016 में करीना कपूर ने फिल्म उड़ता पंजाब में काम किया। इस फिल्म के निर्देशक थे अभिषेक चौबे और इस फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। साल 2018 में करीना कपूर ने शशांक घोष की फिल्म की वीरे

0: साल 2020 में करीना कपूर ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नैना की भूमिका निभाई थी। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री करीना कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं मोहब्बत तीन तरह की होती है, जो हमें मिले कबूल करे ये नसीब है। दूसरी वो जिसे चाहे वो इंसान मिल जाए ये मुकद्दर है। और तीसरी मोहब्बत वो होती है कि हमें मालूम होता है कि उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर भी दिलो जान से मोहब्बत करते रहना, इसे ही इश्क कहते हैं। और ये इश्क बड़ा बेरहम

गांव से ना जाओ कि अभी रात बाकी है, पहलू में आ जाओ कि अभी रात बाकी है, जी भर के तुम्हें देखूं तस्कीन तो हो कुछ, मत शम्मा बुझाओ कि अभी रात बाकी है, कब दिन निकले कब रात कटे कौन ये जाने, छोड़ के न जाओ तन्हा कि अभी रात बाकी है, कट जाए यूं ही उल्फत की बातों में ये पल, जागो हमें जगाओ कि अभी रात बाकी है।

मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर वादा नहीं करना के वादे टूट जाते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर जिद नहीं करना के साथी छोड़ जाते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो कभी शिकवा नहीं करना, ये शिकवे गिले दिलों को दूर करते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो सिर्फ मोहब्बत करो ना जाना कि मोहब्बत ही मोहब्बत को मजबूत करती है।

दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतर।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मैंने मोहब्बत का चेहरा तो नहीं देखा, मैंने तुम्हें देखा है। अगर मोहब्बत की कोई सूरत होती तो वो हूबहू तुम्हारे जैसी होती। अगर मोहब्बत बोल सकती तो लहजा तुम्हारे जैसा होता। तुम्हें पता है तुम वो इनाम हो जो बिन मांगे मिल गया, वो खजाना हो जिसका कोई मोल नहीं। तुम्हें देखते ही सांसें महक जाएं, धड़कने बहक जाएं, मेरे बाग़े मोहब्बत का वो खुशनुमा फूल हो तुम। किसी नेकी का सिला जख्मों का मरहम, दोस्त जाने मन सुकून जिंदगी। मुख्तसर सी बात है, मेरा सब कुछ हो तुम।

सुनो जानम, मेरे लिखने से क्या हासिल, तुम पढ़ो तो कोई बात बने। मेरे सोचने से क्या हासिल, तुम समझो तो कोई बात बने। मैं चुप हूँ तो क्या हासिल, तुम कुछ कहो तो कोई बात बने। मैं फूल हूँ तो क्या, तुम खुशबू बनो तो कोई बात बने। मेरे चाहने से क्या हासिल, तुम भी महसूस करो तो कोई बात बने। मैं बेरंग हूँ तो क्या, तुम उल्फत का रंग भरो तो कोई बात बने।

मोहब्बत सावन नहीं जो टूट कर बरसे और थम जाए, मोहब्बत आग नहीं सुलगे भड़के और राख हो जाए, मोहब्बत आफताब नहीं उभरे चमके और ढल जाए, मोहब्बत तो महताब है बढ़ता है घटता है निकलता है छुपता है मगर कभी फना नहीं होता, तुम्हें देखूं तो कहीं भी नहीं सोचूं तो कुछ भी नहीं मगर जो कह दूं तो तुम मेरे होने की सनद हो, मेरी एक हद है और उसमें बेहद हो तुम।

0: अब क्या सुनाऊं दास्ताने इश्क यार, सुनने वाले मिलते हैं दर्द आशना मिलता नहीं साथियों। अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत, शुक्रिया, नमस्कार।
1: विकटर